0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेम्पेटिव रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
3: आप सुन रहे CMRF 9, stay tuned.

0: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड एट 3852 फिंच एवेन्यू, ईस्टर्न स्कारबरो, यूनिट GO3। आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000।
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aji call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 for Midland and Sioux and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स .ca।

0: Cashpoint, one stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, East in Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर it deserves. Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke sath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan Today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन. प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.

0: Entertainment.
1: Number to call is 416-910-2000. That's 416-910-2000.
2: कुछ लोगों का नाम उनके काम से हो

एशियन कनेक्शन रेडियो सुन रहे सभी लिसनर्स का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर चौहान आपकी सेवा में हाजिर हूं और आज है दिन मंडे, हफ्ते का पहला दिन, 12th of October, यानी कि लॉन्ग वीकेंड आप एंजॉय कर रहे हो। थैंक्स गिविंग डे की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और आप छुट्टी का आनंद ले रहे हो। जो लोग प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज देखो जी छुट्टी का दिन है तो हम चाहते हैं कि बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनाए जाएं और आपकी कोई फरमाइश है तो आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हो 416-593-0055, 416-593-0055। मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा डायरेक्ट नंबर है 416-910-2000, दैट इज 416-910-2000। और ये प्रोग्राम एशियन कनेक्शंस हम पेश करते हैं CMR FM 101.3 पे मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 12 PM। चलिए जी बहुत ही प्यारे गीत के साथ शुरुआत करते हैं एंड द सॉन्ग गोज फॉर यू। सुनते रहिए एशियन कनेक्शंस ऑन CMR FM 101.3।

पावर ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड हफ्ते के 24 घंटे और सातों दिन खुले रहते हैं, जो एक ही छत के नीचे तीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ट्रक वॉश करना, तेल बदलना और रिपेयर करना। इनके पास बहुत बड़ा यार्ड है जहाँ काफी कैमराज लगे हुए हैं, ताकि आप ट्रक को वॉश और सर्विस के लिए ड्रॉप करके नेक्स्ट डे पिक कर सको। ट्रक वॉश विद ऑयल चेंज ओनली फॉर $45। फॉर बेटर डील्स एंड बेस्ट सर्विसेज एक बार जाओ ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड, 71 स्टैफोर्ड ड्राइव, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9054529955, दैट इज 9054529955।

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: यदि आप होंडा की कोई भी न्यू और यूज्ड कार या वैन लेना चाहते हो तो एक बार बोल्टन होंडा पे जरूर जाओ। इनका दावा है कि यहाँ आपको बेस्ट डील्स के साथ साथ सर्विस भी बेस्ट मिलेगी। आपका क्रेडिट खराब है? डोंट वरी, फाइनेंसिंग ऑन द स्पॉट। सोचो मत, एड्रेस नोट करो, 65 पिल्सवर्थ रोड, बोल्टन। यू कैन कॉल 9054570888, दैट्स 9054570888, और विजिट boltonhonda.ca।
2: रिट्स फर्नीचर का यह मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: यदि आपको घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स, तो एक ही नाम, कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन. हमारी कम्युनिटी का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन एंड ग्रेट प्राइसिंग. चाहे सनरूम हो या कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ. एशियन कनेक्शन रेडियो का रेफरेंस देने पर मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट. फॉर फ्री कोट अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट इज 416-831-4790, और विजिट californiaawning.ca. यदि आप एजुकेशन सेल्स में एक एक्साइटिंग करियर ढूंढ रहे हैं, तो कैनेडियन कॉलेज फॉर हायर स्टडीज इज हायरिंग एजुकेशन रिक्रूटर्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड एजेंट्स टू प्रमोट हाई डिमांड एंड करियर फोकस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन पर्सनल सपोर्ट वर्कर, अर्ली चाइल्ड केयर असिस्टेंट, क्लाउड बेस्ड आईटी सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जनरेटिव AI. यदि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो या आपके पास सेल्स एक्सपीरियंस है, तो कॉल करें 416-850-1456 और ईमेल योर रेज्यूमे study@thecanadiancollege.ca. कैनेडियन कॉलेज फॉर हायर स्टडीज, बिल्ड योर करियर, क्रिएट योर फ्यूचर.
3: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है. कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं. तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें. आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं, बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है. GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
4: Kia of Brampton, the number one Kia store in GTA.
5: Number one in customer care.
4: Number one in volume.
5: Or number one in price list.
4: Largest selection of new and used cars.
5: 100,000 kilometers bumper to bumper warranty.
4: Aapke apni zuban bolte hain Kia of Brampton in Brampton Auto Mall at 85 Canham Crescent.
5: For best deals, call General Manager Ashu Suri at 905-457-8410.
4: That's 905-457-8410, or visit kiaofbrampton.ca.
6: Hello, let's talk about your mortgage. One of your most important financial decisions. Right advice at the right time can save you thousands of your hard-earned dollars.
7: Hi, I'm Amit Khanna with Centum Indigo Mortgage Corporation. I provide timely, transparent and expert service for residential and commercial mortgages. Whether you're a new immigrant, self-employed or you're struggling with your credit, I can help you get the right mortgages at the best rates.
6: That's Amit Khanna. Expect expertise, reliability and prompt service at the best rates. Call now. 647-341-2785. License number M1200871.

जी, और एशियन कनेक्शंस रेडियो आप सुन रहे हो 101.3 FM पे, और मैं रणवीर चौहान आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और आज है 12th of October, मंडे, लॉन्ग वीकेंड आप सब लोग एंजॉय कर रहे हो। सबसे पहले थैंक्स गिविंग डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। और आज जरूर किसी ऐसे शख्स का थैंक्स जरूर करें जिसने कभी भी आपको कभी हेल्प की है, कभी आपको गाइड किया है, कभी आपका साथ दिया है। और हमेशा हमें एक दूसरे के शुक्रगुजार होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको एक बार फिर बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ साथ नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, कल था पहला नवरात्रा, आज है दूसरा नवरात्रा, और नवरात्रे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से, एशियन कनेक्शन की तरफ से, CMR की तरफ से, 101.3 FM की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से। हैप्पी नवरात्रे टू ऑल ऑफ यू। और आज के प्रोग्राम में गीत संगीत ज्यादा होगा, आप इंजॉय करें, और जो लोग भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। तो इतने जी कि गीत की फरमाइश थी, और मैं इसलिए मैंने कहा चलो आपको मैं वही गीत सुनाता हूँ। 2017 में फिल्म आई थी रईस, शाहरुख खान की मूवी, आपको याद आ गया होगा। और उसी मूवी से जो गीत हमने चुना है, उड़ी उड़ी जाए, द सॉन्ग गोज फॉर यू, एंजॉय।

0: यार फ्रेश स्पाइसी और मजेदार खाना खाने का मन है तो फ्रेश तंदूरी आ जाओ। तंदूरी वेज या नॉन वेज दोनों का असली मजा लो 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन। बर्थडे बैश हो या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, रात को भी खाओ पियो और मजे करो। फ्रेश तंदूरी अब दो शानदार लोकेशंस पर, क्वीन स्ट्रीट एंड केनेडी। कॉल नाउ 9058740111 पे। ब्रामली एंड बुवेड लोकेशन कॉन्टैक्ट करो 9057921711 पे। फ्रेशली बेक्ड केक्स, जबरदस्त वैरायटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, और हाँ हमारे फूड ट्रक्स भी हैं लाइव केटरिंग के लिए। घर पर इवेंट है, फ्रेश तंदूरी को कॉल करो और अपने इवेंट को यादगार बनाओ। जायकेदार लजीज दार खाओ, फ्रेश तंदूरी पर आओ। खाना लजीज, हर दिल अजीज।
1: जब हम कोई भी कार, वैन या एसयूवी लेने के बारे में सोचते हैं तो सोचते ये हैं कि पैसे कम हो पर गाड़ी बढ़िया हो, फाइनेंस रेट भी अच्छा मिले और वारंटी भी ज्यादा से ज्यादा माइलेज पे हो। ये सारा कुछ आपको एक ही जगह से मिल सकता है और वो है माजदा ऑफ ब्रैम्पटन एट बवेड एंड वैन क्रिक। यहाँ के जनरल मैनेजर मनजिंदर संधू आपको ऐसी डील्स देंगे जो और कहीं से नहीं मिलेगी। कॉल 9054590290 माजदा ऑफ ब्रैम्पटन।
2: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक। बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार वार्ड 9 और 10, ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे।
1: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6472702-2023-647-702-V-23 license number 10394।
4: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji 6478229607 6478229607।
5: प्रेम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, जिथे तुसी हर तरह की मिठाई ला सकते हो, बहुत ही वधिया क्वालिटी ते बहुत ही रीजनेबल प्राइस। प्योर वेजिटेरियन फूड तुसी बैठ के भी खा सकते हो ते केटरिंग भी करवा सकते हो। इन्हां दे स्पेशल्स नोट करो, वेडिंग भाजी $6 पर पाउंड, चना भठूरा $7.99 ते थाली $11.99। फोर लोकेशंस टू सर्व यू। कॉल 9056071123, 9056071123 या पहुंचो 3176 रिजवे ड्राइव यूनिट 66 मिसिसागा एट दंदास एंड रिजवे। प्रेम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।
6: A criminal charge is serious. A criminal offense can be devastating to your life, can affect your family, your career, and can have serious consequences on immigration and citizenship. Our experienced team of lawyers will help you in your time of need. Don't let a criminal charge ruin your life. Call criminal defense lawyer Suki Baidwan.
7: Hi, I am Suki Baidwan. If you have been charged with a criminal offense, call me.
8: 905-230-8888. That's 905-230-8888.
9: प्रोग्राम तो सुनरेशन कनेक्शन 101.3 एफएम ते साडा कोई भी गलबात करना चाहंदे ते नंबर है 416-910-2000 416-910-2000।

0: जी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, मैं रणबीर चौहान आपकी सेवा में हाजिर हूँ और स्टूडियोज का नंबर 416-593-0055 और आपको ले चलते हैं मिल्टन फोर्ड लिंकन और बढ़िया बढ़िया आपको डील्स लेकर देंगे। दानिश जी वेलकम सर, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक ठाक सर, सत श्री अकाल जी, थोनू थोड़े सुनने वाले सारे श्रोतियां नूं सत श्री अकाल
0: जी। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दसो कि मिल्टन फोर्ड लिंकन ते की स्पेशल चल रहा है?
1: मिल्टन फोर्ड लिंकन ते स्पेशल चल रहा है जी ऑन एवरी व्हीकल कोई भी फोर्ड का प्रोडक्ट, वो भावे ब्रोंको होन, ब्रोंको स्पोर्ट होन, F-150s होन, एक्सप्लोरर्स होन, एक्सपेडिशन होन, सब तो वधिया गल मैं थोनू दस दें जी मिल्टन फोर्ड की इस वक्त ये है सारे व्हीकल्स इन स्टॉक ने।
0: अच्छा, वेरी गुड।
1: उत्तों तुसी आपदी कार, आपदी कोई भी कार जिहदा थोनू कोई टेंशन है, कोई ओदी फाइनेंसिस पए है, लेके आओ, ट्रेड कराओ, बेस्ट प्राइसेस लाओ ते नवी गड्डी लेके घरे जाओ। तुसी अपनी टेंशनां दी चाबी इत्थे रख के जानी है ते सुखां दी चाबी इत्थों लेके जानी है।
0: वाह वाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ते और टाइमिंग की ने अपने शोरूम दे?
1: टाइमिंग्स हैगे ने जी सवेरे 9 बजे तो लेके शाम 6 बजे तक पूरे वीक च, ते वीकेंड ते सैटरडे नू हैगे ने 9 to 5।
0: दैट्स वंडरफुल। 655 मेन स्ट्रीट ईस्ट मिल्टन तुसी पहुंचना है और नंबर नोट कर लो 905-875-FORD याद रखो 3673-905-875-3673 या तुसी अपना डायरेक्ट नंबर देना चाहो तो दानिश जी दे सकते हो।
1: मेरा डायरेक्ट नंबर हैगा जी 617-747-713-3130
0: 6 47 713-3130 रिकॉर्ड 647। एनीथिंग एल्स वांट टू ऐड सर?
1: सर बाकी जीरो फाइनेंसिंग दी भी ऑप्शंस हैगियां ने ते होर फोर्ड दे नवे प्लान्स भी हैगे ने, मतलब बेस्ट डील्स चल रही ने। इट इज कंपैरेटिवली पिछले 4 सालों च अक्टूबर बेस्ट अक्टूबर प्राइसिंग है।
0: वाह, वेरी नाइस। और 647-713-3130 ते गलबात करो, दानिश जी ने मिलो और अनिल चोपड़ा जी नंबर वन सेल्स पर्सन इन कनाडा सिंस सो मेनी इयर्स, इनकी पूरी टीम को भी आप मिल सकते हो। और 647-713-3130 मिल्टन फोर्ड लिंकन, एड्रेस एक बार फिर नोट कर लो 655 मेन स्ट्रीट ईस्ट इन मिल्टन 905-875-3673। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट।
1: सत श्री अकाल सर।
0: सत श्री अकाल जी।

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें। इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। कॉल 9059288857 अनाज मार्ट।
2: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए है, जे दुख होवे दसना जरूर चाहिए है, और आप शायद इसलिए नहीं हंस रहे कि आपके दांतों में रहता है दर्द। डोंट वरी, जस्ट गो टू डेंटल ऑफिस ऑफ डॉक्टर नील गजर फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स लाइक फिलिंग, ब्रेसेस, इम्प्लांट और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। एड्रेस 735 ट्वेन एवेन्यू, मिसिसागा, नॉर्थ ऑफ डेरी, ऑन मेविस रोड। टेलीफोन 2894010076, दैट इज 2894010076। थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिदा, दुख होवे दसना जरूर चाहिदा। ऑलवेज रिमेंबर डेंटल ऑफिस ऑफ डॉक्टर नील गजर।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: इमिग्रेशन।
1: जी हाँ, किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को चाहिए विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा या स्पाउस और पेरेंट्स को इमिग्रेशन दिलानी है तो राजीव रामपाल को मिले 7895 Tranmere Drive Unit 22 इन मिसिसागा एट डिक्सी एंड डेरी। कॉल 416-500-8036 दैट्स 416-500-8036।
0: ब्लू ओशन इमिग्रेशन।
2: Sue you. Are you in debt, personal or business? We can help. Business Solutions and Credit Counseling has helped thousands of clients like you for over a decade.
3: With proper help and counseling, you can become debt-free.
4: We can reduce your debt to the maximum and convert balance into easy monthly installments.
2: Nationwide, Toronto, Calgary and Vancouver. Toll-free 1-866-790-8984. Business Solutions, helping you become debt-free.
5: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूं। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
6: You're listening to Asian Connection. Our number is 416-910-2000.

0: किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को एज ए स्टूडेंट, विजिटर, पीआर या फिर अपने स्पाउस या पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखे स्टार इमिग्रेशन।
1: स्टार इमिग्रेशन
0: कॉल 905-457-3131।
1: स्टार इमिग्रेशन।
0: यदि आप होंडा की कोई भी न्यू और यूज्ड कार या वैन लेना चाहते हो तो एक बार बोल्टन होंडा पे जरूर जाओ। इनका दावा है कि यहाँ आपको बेस्ट डील्स के साथ साथ सर्विस भी बेस्ट मिलेगी। आपका क्रेडिट खराब है? डोंट वरी, फाइनेंसिंग ऑन द स्पॉट। सोचो मत, एड्रेस नोट करो, 65 पिल्सवर्थ रोड, बोल्टन। यू कैन कॉल 905-457-0888, दैट्स 905-457-0888, और विजिट boltonhonda.ca।

0: यार फ्रेश स्पाइसी और मजेदार खाना खाने का मन है
1: तो फ्रेश तंदूरी आ जाओ।
0: तंदूरी वेज या नॉन वेज दोनों का असली मजा लो 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन। बर्थडे बैश हो या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, रात को भी खाओ पियो और मजे करो। फ्रेश तंदूरी अब दो शानदार लोकेशंस पर, क्वीन स्ट्रीट एंड केनेडी। कॉल नाउ 9058740111 पे। ब्रामली एंड बुवेड लोकेशन कॉन्टैक्ट करो 9057921711 पे। फ्रेशली बेक्ड केक्स, जबरदस्त वैरायटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, और हाँ हमारे फूड ट्रक्स भी हैं लाइव केटरिंग के लिए। घर पर इवेंट है, फ्रेश तंदूरी को कॉल करो और अपने इवेंट को यादगार बनाओ। जायकेदार लजीजदार खाओ, फ्रेश तंदूरी पर आओ। खाना लजीज, हर दिल अजीज।
2: रिट्स फर्नीचर दा मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end da saman mile sasta.
2: प्रोग्राम तो सुन रहे हैं कनेक्शन 101.3 एफएम से साड़ना कोई भी गलबात करना चाहते तो नंबर है 416-910-2000 416-910-2000।

ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड हफ्ते के 24 घंटे और सातों दिन खुले रहते हैं, जो एक ही छत के नीचे तीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ट्रक वॉश करना, तेल बदलना और रिपेयर करना। इनके पास बहुत बड़ा यार्ड है जहाँ काफी कैमराज लगे हुए हैं, ताकि आप ट्रक को वॉश और सर्विस के लिए ड्रॉप करके नेक्स्ट डे पिक कर सको। ट्रक वॉश विद ऑयल चेंज ओनली फॉर $45। फॉर बेटर डील्स एंड बेस्ट सर्विसेज एक बार जाओ ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड, 71 स्टैफोर्ड ड्राइव, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-452-9955, दैट इज 905-452-9955। प्रेम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, जितों तुसी हर तरह की मिठाई ले सकते हो।

0: ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਸ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਵੈਡਿੰਗ ਭਾਜੀ $6 ਪਰ ਪਾਉਂਡ, ਚਨਾ ਭਟੂਰਾ $7.99 ਅਤੇ ਥਾਲੀ $11.99। 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਕਾਲ 9056071123, 905-607-1123 ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੋ 3176 ਰਿਜਵੇ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ 66 ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਐਟ ਡੰਦਾਸ ਐਂਡ ਰਿਜਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। यदि आपको घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स तो एक ही नाम, कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन, हमारी कम्युनिटी का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस एंड ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ। एशियन कनेक्शंस रेडियो का रेफरेंस देने पर मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। फॉर फ्री कोट अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट इज 416-831-4790 और विजिट californiaawning.ca। यदि आप एजुकेशन सेल्स में एक एक्साइटिंग कैरियर ढूंढ रहे हैं तो कैनेडियन कॉलेज फॉर हायर स्टडीज इज हायरिंग एजुकेशन रिक्रूटर्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड एजेंट्स टू प्रमोट हाई डिमांड एंड कैरियर फोकस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन पर्सनल सपोर्ट वर्कर, अर्ली चाइल्ड केयर असिस्टेंट, क्लाउड बेस्ड IT सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जनरेटिव AI। यदि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो या आपके पास सेल्स एक्सपीरियंस है तो कॉल करें 416-850-1456 और ईमेल योर रेज्यूमे study@thecanadiancollege.ca। कैनेडियन कॉलेज फॉर हायर स्टडीज, बिल्ड योर करियर, क्रिएट योर फ्यूचर।
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
0: Kia of Brampton, the number one Kia store in GTA.
2: Number one in customer care.
0: Number one in volume.
2: Or number one in price list.
0: Largest selection of new and used cars.
2: 100,000 kilometers bumper to bumper warranty.
0: Aap ki apni zuban bolte hain Kia of Brampton in Brampton Auto Mall at 85 Canham Crescent.
2: For best deals, call General Manager Ashu Suri at 905-457-8410.
0: That's 905-457-8410 or visit kiaofbrampton.ca. You are listening to Asian Connections on FM 101.3. This is Ranbir Chauhan, 416-910-2000.

थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिदा है, जे दुख होवे दसना जरूर चाहिदा है। और आप शायद इसलिए नहीं हंस रहे कि आपके दांतों में रहता है दर्द। डोंट वरी, जस्ट गो टू डेंटल ऑफिस ऑफ डॉक्टर नील गजर फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स लाइक फिलिंग, ब्रेसेस, इम्प्लांट और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। एड्रेस 735 ट्वेन एवेन्यू मिसिसागा, नॉर्थ ऑफ डेरी ऑन मेविस रोड। टेलीफोन 2894010076, दैट इज 2894010076। थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिदा, दुख होवे दसना जरूर चाहिदा। ऑलवेज रिमेंबर डेंटल ऑफिस ऑफ डॉक्टर नील गजर।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: प्रोग्राम तो सुन रहे हैं कनेक्शन 101.3 एफएम से साड़ना कोई भी गलबात करना चाहूँ तो नंबर है 416-910-2000 416-910-2000।

0: ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
1: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
2: ਫॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com or call 416-922-5263। Kanda Optical, the name you can trust.
3: जब हम कोई भी कार, वैन या एसयूवी लेने के बारे में सोचते हैं तो सोचते ये हैं कि पैसे कम हो पर गाड़ी बढ़िया हो, फाइनेंस रेट भी अच्छा मिले और वारंटी भी ज्यादा से ज्यादा माइलेज पे हो। ये सारा कुछ आपको एक ही जगह से मिल सकता है और वो है माजदा ऑब्रैम्पटन एट बवेड एंड वैन क्लिक। यहाँ के जनरल मैनेजर मनजिंदर संधु आपको ऐसी डील्स देंगे जो और कहीं से नहीं मिलेगी। कॉल 9054590290, 9054590290, माजदा ऑब्रैम्पटन।
4: A criminal charge is serious. A criminal offense can be devastating to your life. It can affect your family, your career, and can have serious consequences on immigration and citizenship. Our experienced team of lawyers will help you in your time of need. Don't let a criminal charge ruin your life. Call criminal defense lawyer Suki Baidwan.
5: Hi, I am Suki Baidwan. If you have been charged with a criminal offense, call me.
6: 905-230-8888. That's 905-230-8888.

0: भी दोस्त या रिश्तेदार को एज ए स्टूडेंट, विजिटर, पीआर या फिर अपने स्पाउस या पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखें स्टार इमिग्रेशन।
1: स्टार इमिग्रेशन
0: कॉल 905-457-3131।
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक। बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10। ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: ताजियां सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 905-928-8557 Anaj Mart.
4: You're listening to Asian Connection. Our number is 416-910-2000.

जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 905-206-1008, दैट इज 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com।

0: पाँच से आठ तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे।
2: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6474702V23।
3: लाइसेंस नंबर 10395।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 101.3 FM ਤੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
2: यदि आप होंडा की कोई भी न्यू और यूज्ड कार या वैन लेना चाहते हो तो एक बार बोल्टन होंडा पे जरूर जाओ। इनका दावा है कि यहाँ आपको बेस्ट डील्स के साथ साथ सर्विस भी बेस्ट मिलेगी। आपका क्रेडिट खराब है? डोंट वरी, फाइनेंसिंग ऑन द स्पॉट। सोचो मत, एड्रेस नोट करो, 65 बिल्सवर्थ रोड, बोल्टन। यू कैन कॉल 9054570888, दैट्स 9054570888, और विजिट boltonhonda.ca।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: यदि आपको घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स, तो एक ही नाम, कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन, हमारी कम्युनिटी का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस एंड ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ। एशियन कनेक्शंस रेडियो का रेफरेंस देने पर मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। फॉर फ्री कोट अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट इज 416-831-4790, और विजिट californiaawning.ca।
3: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTA's बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
2: You are listening to Asian Connections on FM 101.3. This is Ranbir Chauhan, 416-910-2000.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: किया ब्रैम्पटन द नंबर वन किया स्टोर इन GTA,
2: नंबर वन इन कस्टमर केयर,
1: नंबर वन इन वॉल्यूम
2: और नंबर वन इन प्राइस लिस्ट,
1: लार्जेस्ट सिलेक्शन ऑफ न्यू एंड यूज्ड कार्स,
2: 100,000 किलोमीटर्स बम्पर टू बम्पर वारंटी।
1: आपकी अपनी जुबान बोलते हैं किया ब्रैम्पटन इन ब्रैम्पटन ऑटो मॉल एट 85 कैनम क्रेसेंट।
2: फॉर बेस्ट डील्स कॉल जनरल मैनेजर आशु सूरी एट 9054578410,
1: दैट्स 9054578410, और विजिट kiaofbrampton.ca।
3: A criminal charge is serious. A criminal offense can be devastating to your life. It can affect your family, your career, and can have serious consequences on immigration and citizenship. Our experienced team of lawyers will help you in your time of need. Don't let a criminal charge ruin your life. Call criminal defense lawyer Suki Baidwan.
4: Hi, I am Suki Baidwan. If you have been charged with a criminal offense, call me.
0: 9052308888. That's 9052308888.
5: यार, fresh, spicy और मजेदार खाना खाने का मन है, तो fresh तंदूरी आ जाओ। तंदूरी वेज या नॉन वेज दोनों का असली मजा लो 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन। बर्थडे बैश हो या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, रात को भी खाओ पियो और मजे करो। फ्रेश तंदूरी अब दो शानदार लोकेशंस पर, क्वीन स्ट्रीट एंड केनेडी। कॉल नाउ 9058740111 पे। ब्रामली एंड बुवेड लोकेशन कॉन्टैक्ट करो 9057921711 पे। फ्रेशली बेक्ड केक्स, जबरदस्त वैरायटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, और हाँ, हमारे फूड ट्रक्स भी हैं लाइव केटरिंग के लिए। घर पर इवेंट है, फ्रेश तंदूरी को कॉल करो और अपने इवेंट को यादगार बनाओ। जायकेदार लजीज दार खाओ, फ्रेश तंदूरी पर आओ। खाना लजीज, हर दिल अजीज।
6: प्रोग्राम तो सुन रहे हैं कनेक्शन 101.3 FM। साढ़े कोई भी गलबात करना चाहते तो नंबर है 416-910-2000, 416-910-2000।

0: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
1: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
0: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
2: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
0: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
3: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके
0: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor.
1: ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है? कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। कहीं खो दिया, कहीं पा लिया, कहीं रो लिया, कहीं गा लिया, कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबान बेहिसाब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है? ये किताब भी क्या किताब है?
2: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296. इट्स 289-891-0296. आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम. रिमेंबर, यू आर इन गुड हैंड्स विद ऑल स्टेट.
3: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ. वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है. एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे. हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट. फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर. Visit VainsAutoGroup.com.

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest fee installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086 6478661086 राज जोशी, नाम ही काफी है।
3: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अते 10 लई परोसे योग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नू अपना कीमती वोट पाओ।
4: डॉक्टर आजाद गोयत जिन्ना मुद्दे लई जनता दा साथ देन की उना च अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती, क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कारवाई, वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना, लोकल डेवलपमेंट नाली वार्ड नंबर 9 ते 10 लई गो स्टेशंस नाल कनेक्टिविटी, फुल पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रीन स्पेसेस दी मेंटेनेंस शामिल है।
3: इलेक्शन डेट 26 अक्टूबर 2026, एडवांस वोटिंग ऑन 9, 10, 11, 16 and 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट azadgoyat.ca। पेड फॉर एंड ऑथराइज्ड बाय कैंपेन ऑफ डॉक्टर आजाद गोयत।
2: सहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस और सारी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं। कॉल वैद्य रत्ना पीवी राज, Brampton and Scarborough, 647-327-8111, 647-327-8111.
5: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
2: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940, 647-863-1940.
6: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यू, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन ही करेंगे आपको विद अ लॉट ऑफ म्यूजिक एंड न्यूज को देंगे थोड़ा सा विराम, और क्योंकि हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं Thanksgiving. So happy Thanksgiving to every person out there, जो इसे बड़े धूमधाम से celebrate करते हैं, परिवार के साथ celebrate करते हैं। दूसरी तरफ नवरात्रि की धूम है, उसको लेकर भी आपको शुभकामनाएं। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। और आज जिस गीत से हमने शुरुआत की, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, फिल्म सुहाग का गीत था, और उसके पीछे वजह आपको पता है क्या है। कल था 11th October, एंड 11th अक्टूबर को महानायक अमिताभ बच्चन का 84th बर्थडे था। सो आज के शो में आज हम बिग बी यानी महानायक अमिताभ बच्चन को डेडिकेट करेंगे, ट्रिब्यूट देंगे विद ऑल द सॉन्ग्स फ्रॉम हिज फिल्म्स। उनके फिल्मी सफर को पूरी तय करने की कोशिश करेंगे, जबकि बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे सफर को जो है एक शो में समेटने किया, क्योंकि देयर सो मेनी फिल्म्स एंड देयर सो मच म्यूजिक, सो मेनी सॉन्ग्स, और इतनी रिक्वेस्ट आपकी आई हैं। हो सकता है कि कल परसों तक भी उन रिक्वेस्ट को प्ले करें तो पूरी नहीं की जाएंगी, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है। द सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। सुल्तान जी, जिन्होंने अमेजिंग डील्स लगाई हुई है, नवरात्रि स्पेशल है, थैंक्सगिविंग स्पेशल है, फेस्टिव सीजन वाली स्पेशल है, टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के लिए पहुंच जाइए 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रैम्पटन। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम, 30+ लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट की तरफ से भी आप सबको हैप्पी थैंक्सगिविंग। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज और सहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर की तरफ से भी आप सबको हैप्पी थैंक्सगिविंग, हैप्पी नवरात्रि। एंड अगला गीत हमने लाइनअप भी कर दिया है, इट्स फ्रॉम द मूवी आराना, किशोर कुमार साहब की आवाज में। एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के पॉल सैगल साहब का मैसेज है, हैप्पी थैंक्सगिविंग मैसेज भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट योर होम और बिजनेस विद फेस्टिवल स्पेशल पैकेज। सिर्फ और सिर्फ हमारे साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो लिसनर्स के लिए गेट फ्री स्मार्ट सिक्योरिटी पैकेज वर्थ $2,300 के इक्विपमेंट्स। स्पेशल प्रमोशन है, कोई एक्टिवेशन कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं है। फ्री स्मार्ट सिक्योरिटी पैकेज वर्थ $2,300 इन इक्विपमेंट्स। $100 का प्लान अब $60 में मिलेगा। 24-hour मॉनिटरिंग है, आर्म डिसआर्म कर सकते हैं बाय योर स्मार्ट डिवाइस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। गेट 4 कलर व्यू कैमरास फ्री एंड ऑल्सो पहले 3 महीने आपने कुछ पे नहीं करना। फर्स्ट 3 months ऑफ फ्री इंश्योरेंस डिस्काउंट सर्टिफिकेट, सर्टन कंडीशंस अप्लाई। ऑल्सो ऑफरिंग कलर व्यू कैमरा पैकेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम $700 ऑनवर्ड्स, हाई स्पीड इंटरनेट एंड VOIP लाइंस बाय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। पॉल सैगल और उनकी टीम सर्व कर रहे हैं GTA को सिंस 2009 विद मोर देन 20,000 सैटिस्फाइड कस्टमर्स। आज ही कॉल करें, विजिट करें वेबसाइट paulsecurity.com और कॉल पॉल सैगल 416-940-0624-416-940-0624. ऑल स्टेट इंश्योरेंस की गुरविंदर बामरा जी ऑल स्टेट इंश्योरेंस से आपको हैप्पी थैंक्सगिविंग का मैसेज भेज रही हैं। ऑटो होम इंश्योरेंस में जबरदस्त रेट्स ऑफर करती हैं। आज ही कॉल करें 647-303-3207-647-303-3207-32-07। गुरविंदर बामरा फ्रॉम ऑल स्टेट इंश्योरेंस। बेस्ट ऑटो इंश्योरेंस रेट्स के लिए आज ही कॉल कर लीजिए 647-303-3207 पर। एंड जैसे मैंने कहा, गीत संगीत का कारमा चलता रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट अबाउट 23 डिग्री सेल्सियस टुडे, क्लाउडी सनी एंड लेट नाइट थंडरस्टॉर्म्स की संभावना भी बताई जा रही है। लेकिन कल का वेदर और भी ज्यादा अमेजिंग है, प्रॉबेबली वन ऑफ द लास्ट डेज जो कि अक्टूबर 13 को 27 डिग्रीज पर टेम्परेचर कल देखने को मिलेगा। आज 23 डिग्री तक पहुंचेगा टेम्परेचर। एंड स्क्रीमर्स का मैसेज आपको दे दें, फॉर मोर देन 30 इयर्स स्क्रीमर्स ने GTA का ओरिजिनल मोस्ट टेरिफाइंग हॉन्टेड अट्रैक्शन साबित हुआ है एंड इट हैज ऑलरेडी रिटर्न नाउ। अक्टूबर 9 से 31 अक्टूबर तक चलेगा ये मल्टी हॉन्ट स्क्रीन पार्क। इनवाइट करता है थ्रिल सीकर्स को एंड आने वाले इस पूरे हफ्ते में एक्चुअली हमारी कोशिश होगी आप तक कुछ फ्री टिकट्स देने की, ताकि आप अपने परिवार को, बच्चों को जो है लेकर जा सकते हैं एट स्क्रीमर्स विच इज ऑन 7 PM टू 11 PM वीक नाइट्स एंड संडेज। फ्राइडे सैटरडे 7 PM टू मिडनाइट एंड इट्स एट असेंबली पार्क AD इंटरचेंज वे इन बॉर्न। screamers.ca पर जाकर ज्यादा जानकारी मिल सकती है आपको। एज रिकमेंडेशन 13+ है। पेरेंटल डिस्क्रेशन एडवाइज व्हेन ब्रिंगिंग योर यंगर चिल्ड्रन। इसकी टिकट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे दिस वीक और नेक्स्ट वीक ऑल्सो। एंड स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। पायस्वनी हमारी टेक्निकल डायरेक्टर आज हमारे साथ हैं। कोई भी सॉन्ग रिक्वेस्ट आपने पहुंचानी है स्टूडियो में, पायस्वनी इज प्रेजेंट। आप अमिताभ बच्चन स्पेशल, आज हम बिग बी स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो अमिताभ बच्चन की किसी भी फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं, आप अपनी रिक्वेस्ट 416-593-0055 पर सेंड कर सकते हैं। मेरे साथ बातचीत करनी है, टेक्स्ट करना है तो 6478631940। और यहाँ पे मैं आपसे छोटी सी इजाजत लेने वाला हूँ। एक्चुअल मुलाकात कल होगी 12 बजे विद न्यूज व्यूज एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन फैक्ट इवन द म्यूनिसिपल इलेक्शन के जो एडवांस वोटिंग चल रही है, इट्स स्टार्टेड इन ब्रैम्पटन की अगर बात करें, अक्टूबर 9, 10, 11, 16 एंड 17। वोटिंग आवर्स आर वीकडेज फ्रॉम नून टू 8 PM, वीकेंड्स फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। एंड 2026 ब्रैम्पटन म्यूनिसिपल इलेक्शन मंडे अक्टूबर 26 को होगा। अगर आप वोटिंग डे पर वोट नहीं कर सकते तो ड्यूरिंग एडवांस वोटिंग इसका फायदा जरूर लें। यू कैन वोट एट एनी एडवांस वोटिंग लोकेशन इन ब्रैम्पटन और आपको वोटर नोटिस लेकर पहुंचना है। If you received one and identification showing your name and address, and agar voter notice aapko nahi mila to aap apni ID lekar zarur pahunche Or add your voter information in person. For voting locations, voter information, and list of candidates, visit brampton.ca/brampton votes. And chaliye, geet sangeet se ab aapko karenge all the way 2 p.m. tak entertain Kishore Kumar saath ki awaaz mein Amitabh Bachchan special ka ye second song from the movie Yarana. Stay tuned.

0: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
1: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घिओ, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 9059288857 अनाज मार्ट।
2: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
3: निशा, पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232, Clear Optical by Varun Kanda।
5: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਟਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
6: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
5: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
6: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ।
5: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ।
6: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਨੂੰ,
5: 647-739-8710, license number M200-34504.
7: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
8: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
9: ताली पे तुम्हारा नहीं, हमारा नाम लिखा है।
10: कौन हो तुम?
9: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
8: इसे कहते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो।
11: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
8: ब्रैम्पटन ब्रैंटन म्यूनिसिपल इलेक्शन मंडे अक्टूबर 26 को होगा। अगर आप वोट नहीं कर सकते ऑन वोटिंग डे, तो आप वोट अर्ली भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एडवांस वोटिंग। एडवांस वोटिंग की तारीख होगी अक्टूबर 9th, 10th, 11th, 16th एंड 17th। वोटिंग आवर्स आर वीकडेज फ्रॉम 12 noon टू 8 PM और वीकेंड्स पर 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। यू कैन वोट एट एनी एडवांस वोटिंग लोकेशन इन ब्रैम्पटन। अपना वोटर नोटिस जरूर लाएं इफ यू रिसीव one and identification showing your name and address to vote. Agar aapko voter notice nahi mila, bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. Voting locations ke liye, voter information ke liye and a list of candidates ke liye, aaj hi visit kare brampton.ca/brampton votes. काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
10: वेलकम बैक फ्रेंड्स, और हम पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर पर. गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओजा इन पिनाक ओजा जी, 10 कॉट्रल बुलेवार्ड यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन से आपको करते हैं सर्व. नॉर्थ पार्क और एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन. द क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे फॉर योर कन्वीनियंस, 10 AM टू 6 PM. वॉक इन करें या अपॉइंटमेंट बनाएं, और ऑब्वियसली अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो फोन पर कंसल्टेशन करें और दवाई आपको शिप कर दी जाएगी. 6477602779 6477602779. देखते हैं मीता जी आज किस हेल्थ टॉपिक पर करेंगी बातचीत. मीता जी, वेलकम टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो.
12: हेलो एवरीवन, दिस इज मीता फ्रॉम काव्या होम्यो केयर. आज हम कुछ देखते हैं यूट्राइन पॉलिप के बारे में, जो यूट्रस में बच्चेदानी के अंदर पॉलिप ग्रो करते हैं. अब नॉर्मली क्या होगा कि यूट्रस की अंदर की जो टिश्यू है, लाइनिंग है, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं. अब जब ये एंडोमेट्रियम ग्रो करने लगता है, एबनॉर्मली इसके सेल्स जो है वो बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, तो उसके साथ यूट्रस के अंदर जो है पॉलिप्स डेवलप होते हैं, जो यूट्रस के साथ अटैच होते हैं. तो समटाइम्स वो ग्रेप्स की तरह हैंग डाउन करते हैं यूट्रस की कैविटी के अंदर. सो बच्चेदानी में जब इस तरह के पॉलिप्स बन जाते हैं तो उसके साथ क्या होगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, जिसमें खास करके जो पीरियड्स हैं वो जल्दी आने लगते हैं. पीरियड्स के बीच में जो है ब्लीडिंग होना, हैवी ब्लीडिंग होने की प्रॉब्लम रहती है. इन बीच बीच में स्पोर्टिंग हो जाना, कुछ भी हेवी उठाया या एक्सरसाइज की, ज्यादा काम किया, उसके साथ ही जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. और ये प्रॉब्लम मेनली देखा जाए तो जो लेडीज पेरी मेनोपोज में या मेनोपोजल एज में है तो उनमें ज्यादा पाई जाती है, जिसमें क्या होगा कि ईस्ट्रोजन हार्मोन, जिसका इसमें काफी बड़ा रोल माना जाता है. अब हार्मोनल इम्बैलेंस करके हार्मोन्स का लेवल कम होने के साथ क्या होगा कि ये ईस्ट्रोजन लेवल में फ्लक्चुएशन होगा, जिस करके माना जाता है कि इस तरह के पॉलिप्स जो है ये डेवलप होते हैं. सो लेडीज 40s में, 50s में इस तरह की कंडीशन ज्यादा पाई जाती है. हालांकि अर्ली एज में भी ये हो सकते हैं, जिस करके प्रेगनेंसी रुकने में भी ये इंटरफियर करता है. कई बार वो ट्यूब को ब्लॉक कर देगा अगर बड़ा हो जाता है. ये जो पॉलिप है, छोटे आप कह लें कि सेसमी सीड से लेके टेनिस बॉल जितने बड़े साइज में कई बार बन जाते हैं. पॉलिप मोस्टली देखा जाए तो ये नॉन कैंसरस कंडीशन होती है, कि इसमें वरी वाली बात नहीं होती है. लेकिन पॉलिप्स के कुछ एक टाइप्स इस तरह की है कि जो कैंसर में डेवलप हो सकती है. सो इस कंडीशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. जब भी पॉलिप्स बने हैं ना, आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास इस तरह के सिम्टम्स लेके जाते हैं कि पीरियड्स हेवी आ रहे हैं या बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है, तो वो आपको अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं. पेल्विक अल्ट्रासाउंड के साथ इस कंडीशन का पता चलता है कि आपको जो है अंदर पॉलिप्स इस तरह के ग्रो हुए हैं. अब ये जो पॉलिप्स हैं, कई बार इसके लिए आपको सर्जरी एडवाइस किया जाता है कि इसके लिए सर्जरी करवानी पड़ेगी. तो ऐसे में जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इट्स वेरी हेल्पफुल. कोई भी एज ग्रुप में आपको इस तरह के पॉलिप्स डेवलप हो रहे हैं, अर्ली आप 30s में हैं, 40s में हैं, 50s में हैं, इस तरह के जो ग्रोथ है उसको होम्योपैथिक मेडिसिंस जो है वो श्रिंक करती हैं. और कुछ मंथ्स का इसका कोर्स होता है जो लेने से फिर आप सही हो सकते हैं. सो बॉडी में कहीं पे भी इस तरह के ग्रोथ्स हो रहे हैं, पॉलिप्स डेवलप हो रहे हैं, सिस्ट हुए हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, आप काव्या होम्यो केयर से हमारा कॉन्टेक्ट जो है वो जरूर कर सकते हैं. नंबर टू कॉल इज 6477602779. थैंक यू सो मच.
10: थैंक यू सो मच मीता जी. एंड दोस्तों, याद रखें काव्या होम्यो केयर, मीता ओजा इन पिनाक ओजा, 10 कॉट्रल बुलेवार्ड यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन, नॉर्थ पार्क एयरपोर्ट रोड का इंटरसेक्शन. क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे 10 AM टू 6 PM एंड द नंबर टू कॉल इज 6477602779. काव्या होम्यो केयर, 6477602779.

0: क्रेडिट कार्ड जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद। सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 4166710577, 4166710577, alldebtsolutions.ca।
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट veinsautogroup.com।
2: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
3: अच्छी, याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
2: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
4: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। choleBhature.ca, कॉल 9054582448।
5: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइनिंग लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
6: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
7: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें। 6476280040, दैट इज 6476280040।

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com।
2: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक। बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10। ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: यू आर लिस्निंग टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 647-863-1940, 647-863-1940।
4: यू आर लिस्निंग टू द सनी जोशी शो ऑन साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, CMR 101.3 FM।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 905-206-1008, दैट इज 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। एंड याद रखें, फ्री सेमिनार सैटरडे को होता है 12:30 to 3:30, दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू गो। फ्री सेमिनार है, कोई चार्ज नहीं है, आप अपनी सीट रिजर्व करवाएं, चाहे आप अकेले जा रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, स्पाउस के साथ जा रहे हैं, एंड गो एंड चेक इट आउट। 905-206-1008 मिसागा में इनका ऑफिस लोकेटेड है, विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग। मोहम्मद साहब आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच सनी जी, हमारे सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से और विन लाइफ टाइम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून
1: जी आपको भी। एंड मोहम्मद साहब, आज क्या दिमाग में आपके आ रहा है, क्या इतने सालों से विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग के जरिए यू've helped people earn $2,000 to $6,000 महीने का, वो भी US, आपके दिमाग में आज क्या आ रहा है, what is it that you want people, खासकर the times that we are going through right now?
2: बिल्कुल सनी जी, देखें अभी जैसे हालात आगे आ रहे हैं तो आई एम सीइंग लाइक अ chaos। देखें अभी लोगों की mortgages भी नहीं पे हो रही और हालात आगे से और वर्स आ रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा स्किल ले लें जो पिछले 18 साल से हम एक सेम लोकेशन से अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं, और वो ये है कि एक ऐसा स्किल के जो भले मार्केट नीचे जाए भले मार्केट ऊपर जाए, 100% रिसेशन प्रूफ जो बिजनेस है वो है ऑनलाइन ट्रेडिंग का। और मोस्टली लोग इसमें पैसा लूज करते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके पास प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रॉपर एक नॉलेज नहीं है, और दूसरा ये है कि वो डरे होते हैं कि हम इसमें पैसा ना लूज कर दें। देखिए ये जो डर होता है ना, ये इसका रीजन सिर्फ एक चीज है, और वो क्या है कि नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन टू यू। अगर आपके पास ये नॉलेज हो, आपके पास ये पूरे का पूरा सेटअप हो, एक एनवायरमेंट में आप बैठे हो, कि देखें आज सुबह हमारी 8:30 पे लोग डन हो गए थे, और हर रोज ऐसा ही होता है। अच्छा, काफी लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि जी ये जो 100 to $300, अच्छा ये मिनिमम है, ये बाय द वे मैं बता, लोग 15,000-20,000 US महीने का बनाते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। अभी लोग ये सुनते हैं जब, तो कहते हैं हाउ इट पॉसिबल कि मैं 14 घंटे या 10 घंटे या 8 घंटे काम करने के बाद भी मेरे पास महीने में 5,000-7,000 नहीं आता, तो ये कैसे बनाते हैं। बिलीव मी, ये मेरा चैलेंज है कि लर्न द पावर ऑफ 90 मिनट। इसका मतलब है कि सिर्फ हमने 90 मिनट कंप्यूटर के सामने बैठना है, आके देखें कैसे हाउसवाइफ्स घर से बैठ के जो बच्चों की टेक केयर कर रही हैं, सीनियर सिटीजन हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि वो कैसे विद इन 10-20 मिनट, ये 90 मिनट की जो हमारी ये विंडो होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरा 90 मिनट कंप्यूटर के सामने बैठना है। देखें अगर मैं सबसे कहता हूं कि अगर आपने कमाई चेंज करनी है ना, तो उसमें दो चीजें आप चेंज करें, एक उसका तरीका चेंज करें और दूसरा द वे यू थिंक उसको चेंज करना है। देखिए जिंदगी में हमारे पास हर वो चीज जो आती है ना, वो आती है हमारी पावर ऑफ हमारी थॉट से। अगर आप चीजों को डिफरेंट वे से सोचना चाहते हैं तो अपनी थॉट्स को आपने चेंज करना है। अगर आप अपनी रिजल्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी सोच को बदलें, और डोंट वरी अबाउट फ्यूचर। यार मैं ये समझा के थक गया हूं कि हम लोग ना बैठ के फ्यूचर की वरी कर रहे होते हैं, वरी नहीं करना, फ्यूचर की प्रिपरेशन करनी, उसके लिए तैयारी करें, आए आके देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, यू हैव नथिंग टू लूज, अ लॉट टू गेन, आके सेमिनार अटेंड करें। आई बेट यू आप कहोगे कि यार ये हमने इतने साल क्यों वेस्ट किए हैं, आए आके देखें कि कैसे आप भी उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए दुनिया में कहीं पे बैठे हुए हैं, आपको फोन पे सिग्नल आ रहे हैं, आपको लाइव स्ट्रीमिंग आ रही है कि आपने क्या करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कॉल करके अपनी सीट बुक करें और आके एक दफा देखें तो सही कि ये क्या चीज है और कैसे आप हमारा पार्ट बन सकते हैं। तो कॉल करके अपनी सीट बुक करें एट 905-206-1008, 905-206-1008, और यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड।
1: बिल्कुल जी, 905-206-1008, मोहम्मद साहब ने जो कहना था कह दिया। अब बारी हमारी है, जिनके पास यू नो आप अगर अवेलेबल नहीं होते, कई बार ऐसा होता है कि आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, बट सैटरडे को आप इतना सा टाइम निकाल सकते हैं 12:30 से 3:30 के बीच में, आप अपनी सीट जो है रिजर्व करवाएं कॉल करके. कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन माइंड इन रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग में उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप भी एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रखते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिनिमम $2,000 से $6,000 मंथली कमा सकते हैं, वो भी US. चलिए 905-206-1008 905-206-1008 नंबर है जिस पर आपने करना है कॉल. मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया.

रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस, और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते हैं रियल्टर राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली। घर खरीदना या फिर घर बेचना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है राज जोशी, रियल्टर बेमिसाल। कॉल राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी 647-866-1086, 647-866-1086। राज जोशी, सिर्फ नाम ही काफी है।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Dr. Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
4: Apne kareebi ko khone se bada koi gham nahi. Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रेमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्बन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave इन Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
5: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों? नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल, 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
4: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रेमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्बन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave इन Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
3: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
6: Hi everybody, this is Neeraj Sridhar, also known as Bombay Vikings. Right now you're listening to South Asian Unlimited Radio.

0: सिटी हॉल विच ब्रेड रेडफर्ड ने तुहाडा टीटीसी किराया वधाया अते वार वार सर्विस विच कटौती की थी। उदों भी जदों उन्होंने कहा सी कि वो अजिहा नहीं करनगे, वो अपने वादियां तो मुकर गए। बिल्कुल उसे तरह जिवें उन्होंने सस्ते करां, किराया कंट्रोल, पुलिसिंग अते बाइक लेना दे मामले विच कीता। ब्रेडफर्ड कहंदे कुछ होर हन अते करदे कुछ होर, क्योंकि चोणां जित्तण लई वो कुछ भी कह सकते हैं। वो इदां दे ही हन कि तुसीं सचमुच उन्हां ते भरोसा कर सकते हो। अपने घर दे किराए लई, अपने टीटीसी किराए लई, अपनी सुरक्षा लई 26 अक्टूबर नूं फैसला तुहाडा है। Authorized by the Olivia Chow campaign.
1: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को

पकड़े गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296. इट्स 289-891-0296. आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम. रिमेंबर, यू आर इन गुड हैंड्स विद ऑल स्टेट.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: डांडिया या गरभा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

0: Nation. Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
3: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
4: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, Wayne's Auto Group is always there. Visit waynesautogroup.com.
3: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
5: हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1

0: सहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर। हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस और सारी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं। कॉल वैद्यरत्ना पीवी राज, Brampton and Scarborough, 647-327-8111, 647-327-8111. 2026 ब्रैम्पटन म्यूनिसिपल इलेक्शन मंडे अक्टूबर 26 को होगा। अगर आप वोट नहीं कर सकते ऑन वोटिंग डे, तो आप वोट अर्ली भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एडवांस वोटिंग। एडवांस वोटिंग की तारीख होगी अक्टूबर 9th, 10th, 11th, 16th एंड 17th। वोटिंग आवर्स आर वीकडेज फ्रॉम 12 नून टू 8 पीएम और वीकेंड्स पर 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। यू कैन वोट एट एनी एडवांस वोटिंग लोकेशन इन ब्रैम्पटन। अपना वोटर नोटिस जरूर लाएं इफ यू रिसीव one an identification showing your name and address to vote. Agar aapko voter notice nahi mila, bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. Voting locations ke liye, voter information ke liye and a list of candidates ke liye, aaj hi visit kare brampton.ca/brampton votes. मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 647-863-1940, 647-863-1940।
1: जो कैसी हो, हाउस योर सन डूइंग?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 905-457-3232, Clear Optical by Varun Kanda.
0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940, 647-863-1940.
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ।

जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट विन लाइफ टाइम।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Seerat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
4: Brampton City Council, Ward 9 ate 10 layi parose yog umidwar Dr. Azad Goyat nu apna kimti vote pao.
5: Dr. Azad Goyat, jina mudya layi janta da saath den ki, una ch accountability, transparency, ate public consultation, property taxes vich katauti, crime te extortion te karwai, vadde businessman, ate politicians da nexus todna, local development, nali, ward number 9 te 10 layi go stations nal connectivity, full police station, industrial development, green spaces di maintenance. Shamil hai.
4: Election date 26th October 2026. Advance voting on 9, 10, 11, 16 and 17 October. For more information, visit azadgoyat.ca. Paid for and authorized by Campaign of Dr. Azad Goyat.
6: Devi aur Sajjano, aap sun rahe South Asian Unlimited Radio. Aao, papo, lag gaya, chappo, South Asian Unlimited Radio. Khamosh, bataneez. Chali gaya, kehta, bojhe ka raag kehta. Jis raag se barood bane, usse South Asian Unlimited Radio kehta.
7: Jani, ye South Asian Unlimited hai.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रैम्पटन, 905-450-2828. टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान हमारे साथ हैं. सुल्तान जी, सुल्तानिक डील्स लेकर पहुंच चुके हैं. देर ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM to 7 PM. फेस्टिव सीजन है भाई, फेस्टिव सीजन में बेस्ट डील्स आप तक पहुंचाना मेरा काम है. सो सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर रुख करेंगे और फेस्टिव सीजन की अमेजिंग, मोस्ट अमेजिंग साल की डील्स आप तक पहुंचाते हैं. सुल्तान जी, स्वागत है आपका.
8: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
3: सुल्तान जी, सबसे पहले फेस्टिव सीजन के मद्देनजर और उसका फायदा लेते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स का भी फायदा हो जाए, टीवी सेक्शन में मोस्ट अमेजिंग डील्स प्लीज बताएं.
8: मोस्ट अमेजिंग डील सनी भाई, हमारे पास इस वक्त 55 इंच गूगल फीचर्स के साथ 2026 का लेटेस्ट मॉडल है और क्रोमकास्ट बिल्ट इन है 55 इंच ओनली 399 में.
3: जी,
8: सिर्फ 399 का 55 इंच टीवी मिलेगा ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से. 65 इंच की अगर बात करें तो 499 में 65 इंच गूगल फीचर्स के साथ क्रोमकास्ट बिल्ट इन लेटेस्ट मॉडल है स्मार्ट टीवी जो कि आपको 499 में 65 इंच मिलेगा. जहां ये अमेजिंग डील्स अवेलेबल हैं जी, वहां ये भी बता दूं कि बिग स्क्रीन टीवीज में हमारे पास जो सोनी ने लेटेस्ट लॉन्च किया है, सोनी का ब्रेविया मॉडल है ये और 100 इंच है ये. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग प्राइस के साथ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस अपने कस्टमर को 2999 में 100 इंच सोनी गूगल फीचर्स के साथ 120 हर्ट्ज विद गेमिंग मोड, क्योंकि सोनी प्लेस्टेशन 5 बनाया है उन्होंने जो प्रो, अब उसके साथ रेजोल्यूशन इसकी मैच की गई है. बेस्ट डील है, बिगेस्ट स्क्रीन है, 100 इंच सोनी ब्रेविया 3 आपको मिलेगा ओनली 2999 का. $4,500 इसकी प्राइस है, $1,500 आप ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे सेव करेंगे. इसके साथ साथ 85 इंच सोनी ब्रेविया मॉडल लेना चाहें तो हमारे पास 85 इंच सोनी ब्रेविया मॉडल 1599 में है. लेकिन साथ के साथ सैमसंग ने जो लॉन्च किया है 85 इंच मिनी एलईडी के साथ तो मिनी एलईडी 2026 का लेटेस्ट मॉडल सैमसंग का सिर्फ 1199 में 85 इंच मिलेगा। वेरी स्पेशल प्राइस है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, इंसेंटिव वॉक इन कस्टमर को मिल रहे हैं, पेमेंट 6 महीने में करनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इवन यहां तक के 75 इंच 799 में सैमसंग मिलेगा ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे। तो 32 इंच से लेके 100 इंच तक एनी साइज ऑफ टीवी आपको चाहिए, सोनी या सैमसंग, गारंटेड आप 600 से $800 तक की सेविंग कर सकते हैं। पहुंचना है आपको 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी, ऑन बोवेड है, ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है जी, 905-450-2828 हमारा नंबर है, 905-450-2828
3: 200 फेस्टिव सीजन की डील टीवी सेक्शन में तो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब जो दो नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, अप्लायंस लॉन्ड्री, देखते हैं कि जब भी सुल्तान जी आते हैं तो ऑलवेज प्रॉमिस करते हैं और डिलीवर भी करते हैं द बेस्ट डील्स। सुल्तान जी, अप्लायंस लॉन्ड्री में फेस्टिव सीजन की क्या जबरदस्त डील्स चल रही है?
8: सनी भाई, जैसे मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में आजकल बता रहा हूं कि 30% प्राइस इंक्रीज हुई है, क्योंकि 25% टैरिफ लगा है जी स्टेनलेस स्टील स्टील पे और होम अप्लायंसेस पे, 5% का उन्होंने फ्रेट इंक्रीज हुआ है, तो 30% का डिफरेंस इस वक्त एज ऑफ टुडे अगर कोई कस्टमर बाय करते हैं तो उन्हें मिलता है। लेकिन ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस स्टिल सेविंग करवा रहा है जी अपने कस्टमर की। फॉर एग्जांपल, फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर है जो कि स्टीम फीचर के साथ है, वॉशर भी स्टीम, ड्रायर भी स्टीम है, प्लैटिनम सीरीज, प्लैटिनम कलर में आपको ये मिलेगा, अल्ट्रा लार्ज कैपेसिटी का वॉशर एंड ड्रायर, $2000 वाला, टैरिफ लगी प्राइस इसकी $2600 है, लेकिन 1799 में हमारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, फ्री डिलीवर होगा और 1799 भी 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर है जो कि $2200 वाला, सिर्फ 1499 में लेके $700 स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर पे सेव किए जा सकते हैं। टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर है $1700 वाला, 1099 का पेयर लेके $600 टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर पे सेव किए जा सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी होगी और 6 मंथ में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्रिज स्टोव डिशवॉशर बंडल पैकेज लेते हैं, $5000 वाला 2999 में मिलेगा, जबकि इसकी भी टैरिफ लगी प्राइस जो है 3899 है। अगर आप बिल्ट इन किचन लेते हैं, बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वाल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवॉशर और बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन 40% डिस्काउंट पे $12000 वाला सिर्फ $6900 में मिलेगा, 40% ह्यूज डिस्काउंट है बिल्ट इन किचन में जो कि आपको ऑफर किया जा रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे। ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट कॉम हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, और सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक 7 डेज अ वीक हमारा स्टोर खुलता है जी, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी, ऑन बोवेड है, ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट कॉम। सिंगल सिंगल पीस पे भी आप $600 से $800 सेव करेंगे। 36 इंच वाइड फ्रेंच डोर फ्रिज है फुल साइज का, बॉटम फ्रीजर डबल डोर ऑन टॉप $2200 वाला 1499 में है, $700 आप सेव करेंगे। टॉल टब की डिशवॉशर है स्टेनलेस स्टील की $900 वाली 499 में लेके $400 सेव करेंगे। टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर है जी जो $1000 वाली सिर्फ 599 में लेके $400 आप सेव करेंगे। विजिट करें, सेलेक्ट करें, फ्री होम डिलीवरी होगी, 6 मंथ में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 905-450-2828 905-450-2828 हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को, ह्यूज डिस्काउंट्स मिलेंगे आपको बिग स्क्रीन टीवीज पे या फिर लॉन्ड्री सेक्शन में वॉशर एंड ड्रायर, या अगर आप किचन अप्लायंसेस में फ्रिज स्टोव डिशवॉशर देख रहे हैं तो 905-450-2828 905-450-2828 जी।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
8: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
3: जी. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828.
9: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
10: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे.
9: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ.
10: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं.
9: दैट्स वंडरफुल.
10: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा.
9: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
10: ऑन बवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन. टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस. See you.

0: रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस, और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते हैं रियल्टर राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली। घर खरीदना या फिर घर बेचना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है राज जोशी, रियल्टर बेमिसाल। कॉल राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी 647-866-1086, 647-866-1086। राज जोशी, सिर्फ नाम ही काफी है। This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown। Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232। For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna। The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments। एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA, Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 या 416-627-4737। And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, जो कि 30 plus locations से serve करते हैं 100% pure vegetarian food, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम Rajdhani Sweets and Restaurant।
1: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 905-928-8557 अनाज मार्ट।
2: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक। बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10। ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
3: ताली पे तुम्हारा नहीं, हमारा नाम लिखा है।
4: कौन हो तुम?
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
5: इसे कहते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। स्वैग।

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बजाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com।
2: डांडिया या गरभा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकोनट मैंगो लीव्स खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
3: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी 6478631940 6478631940।
4: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
5: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
4: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
2: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
6: क्रेडिट कार्ड GST या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद, सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस GTA। ऑल डेट सॉल्यूशंस मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577 416-671-0577 alldebtsolutions.ca।
7: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
8: अच्छी, याद है, याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
7: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा cholebhature.ca पे चलो।
9: cholebhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे cholebhature.ca। कॉल 905-458-2448।
10: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
11: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तोहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तोहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट 42 ए ब्रैम्पटन। कॉल 905-928-8557 अनाज मार्ट।
12: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर। वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। Visit veinsautogroup.com.
10: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
13: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: रंग बरस भी गचु नरवाली रंग बरस हो रंग
1: जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

मुस्कुराइए दिल से, छूनिए साथ साथ, गुनगुनाइए जरा प्यार से, डालिए हाथों में हाथ, बस वॉल्यूम बढ़ाइए और लवी डवी अंदाज में हमसे जुड़ जाइए। हर मूड का म्यूजिक, नए पुराने सुरीले गाने, लवी डवी फिल्मी बातें, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के अफसाने, रेडियो टोरंटो कनाडा आरटीसी, हर दिल की धड़कन, हमारी आपकी बातों का रंग, ये है आपका अपना शो आमिर और शिवानी की आवाजों के संग। आमिर और शिवानी की आवाजों के संग।

मंडे से फ्राइडे दोपहर 2 से 3 बजे तक। तुम माहौल बनाइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और लवी डवी हो जाइए। RTC रेडियो टोरंटो कनाडा 416-303-3639।

0: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर, और रेडियो टोरंटो कनाडा के आफ्टरनून ड्राइव टाइम शो में आप सभी का स्वागत है। और थैंक्स गिविंग लॉन्ग वीकेंड है, और अपनों के साथ बहुत सारे शुक्रिया अदा करने की रिवायत के साथ, और अपनों के साथ बहुत खूबसूरत लम्हे बिताने के साथ साथ आप चल रहे हैं ये सफर में, और आपके साथ है ये आफ्टरनून ड्राइव टाइम शो, जहाँ पे गोल्डन 50s, मेमोरेबल 60s, सेंसेशनल 70s, रॉकिंग 80s, म्यूजिक 90s and trending melodies के साथ चलता है सफर आमिर और शिवानी के साथ। आमिर, गुड आफ्टरनून, और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू शो में हमारा साथ देने के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलाम वालेकुम, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो

0: रेडियो टोरंटो कनाडा, आप हैं शिवानी और आमिर के साथ। और आमिर, एक बहुत अच्छा, सबसे पहले तो हम थैंक्स गिविंग की बात करें।
1: जी जी बिल्कुल, जरूर कीजिए।
0: आप आज के लिए थैंक्स देना चाहेंगे? जैसे बचपन में नहीं होता था, हमें जब अवार्ड्स मिलते थे तो हम कहते थे आई वुड लाइक टू थैंक ऑलमाइटी पेरेंट्स दिस दैट।
1: देखिए शिवानी, आपका शुक्रिया सबसे पहले। आप ना होती यहाँ, मेरे साथ ना होती तो खूबसूरत, चमकदार, हसीन, बोलती हुई, गुफ्तगू करती हुई और दिल की तारों को छेड़ती हुई खूबसूरत आंखें ना मिलती मुझे।
0: थैंक यू सो मच। और
1: आप,
0: कुछ
1: आप यहाँ ना होती तो ये मुस्कुराहट मुझे ना मिलती, जैसे सुबह जब पो फूटती है और कलियां चटकती हैं, उस पो के फूटने की वजह से उन कलियों पे ओस पड़ती है और वो अचानक खिल जाती हैं। इस तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका दिखाई देता है, उसके लिए शुक्रिया। आपकी आंखों का शुक्रिया, आपके होंठों का शुक्रिया, आपकी जुल्फों का शुक्रिया, आपके कदमों का शुक्रिया जिनके जरिए आप यहाँ तशरीफ लाती हैं।
0: अच्छा, मैं कदमों से लाई थी क्या? मुझे लगा मुझे आप चार्टर्ड प्लेन में लाए थे आज। शुक्रिया,
1: देखिए होना ऐसे ही चाहिए था
0: कि कोई अपने आप घर से चलता हुआ स्कूटर पर बैठ के आ जाए और आप कह दें कि शुक्रिया।
1: देखिए, दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हर बंदा चार्टर प्लेन तो नहीं ना अफोर्ड कर सकता।
0: इसलिए वो स्कूटी हमारे पास इंडिया में वो स्कूटी होती थी और हमेशा रिजर्व में चलती थी गैस पे ना, कभी भी फुल होता ही नहीं था।
1: हाँ जी, आपके ये जो नेल्स हैं इनका शुक्रिया, आपके मखमली हाथों का शुक्रिया, आपकी जो आईब्रोज हैं, पलकें, उनका शुक्रिया।
0: आईब्रोज और पलकें अलग अलग चीज दो होती है, एक नहीं होती।
1: भाई शुक्रिया मेरे पास इतने हैं कि मैं, मुझे अब पता नहीं किन किन चीजों का कैसे कैसे शुक्रिया अदा करना है। आपके इस खूबसूरत लिबास का शुक्रिया जिसने रौनक को दुआम बख्शा है, रौनक को मजीद रौनक दी है, उसका शुक्रिया। आपने ये जो रंग आज पहना हुआ है बड़ा खूबसूरत, इसको कद्दू कलर कहते हैं।
0: अच्छा, ग्रीन ग्रीन वाला कलर।

0: ग्रीन वाला कद्दू। इस कद्दू का शुक्रिया, कद्दू रंग का शुक्रिया, ये जो इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है इसका भी बहुत
1: ये आपने करवाई है,
0: शुक्रिया। वेल,
1: उस टेलर का शुक्रिया जिसने
0: उस
1: ये किया।
0: ट्रेलर का शुक्रिया जिसने ये किया है, जो आपने हेडफोन्स पहने हैं उनका शुक्रिया।
1: ये आपकी बदौलत है, ये हेडफोन देने का बहुत बहुत शुक्रिया जिससे मैं आपकी ये तारीफ सुन सकूं।
0: आपने फ्राइडे को मुझे आलू की सब्जी खिलाई उसका बहुत शुक्रिया, चटनी का बहुत शुक्रिया जो पुदीने की थी। क्योंकि थैंक्स गिविंग है ना आज, तो फिर तो शुक्रिया तो अदा करना बनता है। पता नहीं ये मौका दोबारा कभी मिले या ना मिले।
1: और आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे जो आपको इस फील्ड में लेके आए और जिससे कि मुझसे मिलने का मौका मिला।
0: नहीं, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मुझे गलत फील्ड में ले आए।
1: सुना है आप वकील बनने जा रहे हैं, वो आपकी असल फील्ड है?
0: जी असल
1: आप
0: नहीं है,
1: पर मुकदमा करने वाले हैं।
0: देखिए ये काम मुझे बहुत देर पहले ही कर देना चाहिए था। मैं कोई आज से 16-17 साल पहले किसी की आंखों की वजह से कत्ल हुआ था। तो आई वॉज मर्डर्ड, आई वॉज स्लॉटर्ड बाय समबडीज आईज। तो उस वक्त मुकदमा करना बनता था, मेरे पास पूरे शवाहिद थे, सबूत थे, गवाह थे इस बात के मौजूद, लेकिन मैं ये नहीं कर सका। तो ये बदला मैं अब लेना चाहता हूँ
1: दोस्त की हैसियत से।
0: लेकिन ये मुल्क जरा अलग
1: है आपके साथ।
0: ये मुल्क जरा अलग है, यहाँ 5,000 का जुर्माना ही करेंगे वो।
1: बस इतना ही।
0: मैं इसी चीज का लॉ पढ़ रहा हूँ, या तो उनको 2 साल की कैद हो सकती है या 5,000 जुर्माना, इसे ऊपर नहीं कर सकते।
1: तो चलिए इस जुर्माने को आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल जुर्माना बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है जब आप किसी के इश्क में पड़ जाते हैं।
0: और इश्क का भी शुक्रिया
1: है ना, किसका?
0: जो भी आजकल चल रहा है।
1: तो चलिए इश्क को आगे बढ़ाते हैं। आपके प्यार में हम सवरने लगे, फ्रॉम द मूवी राज, अलका याग्निक की आवाज, आपका फेवरेट 90s।
0: ऑफ कोर्स इंडीड, एंड दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू वन एंड ओनली शिवानी।
1: थैंक यू।

0: रेडियो टोरंटो कनाडा, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ, और शुक्रिया अदा करेंगे अपने हमारे स्पॉन्सर्स का भी, जिसमें से एक का स्पॉन्सर हमारे साथ हैं। वो बहुत नेक काम कर रही हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना आमिर, जो किसी भी प्रॉब्लम कह लीजिए या किसी भी प्री ऑक्यूपाइड चीज़ों के चलते, एंगेजमेंट के चलते घर से बाहर नहीं निकल पाते, काम पे नहीं जा पाते, उनके लिए घर पे रह के अगर वो यूएस डॉलर्स में वो कमाई कर सकें, जैसे लेडीज़ हैं बच्चों के चलते नहीं जा सकती, हमारे सीनियर्स हैं जो किसी भी वजह से घर से बाहर नहीं जा सकते, एवरी डे कम्यूट नहीं कर सकते, उनके लिए यूएस डॉलर्स में सिर्फ एक डेढ़ घंटा आप काम दे के बना सकते हैं। तो हमारे मेहमान से आइए, ताल्लुक कराते हैं।
1: जी बिल्कुल, अब तक शिवानी कोई $13,000 बना चुकी हैं पिछले 2 महीने में, शेयर नहीं करती हूँ। 13,000 अमरीकी डॉलर तो काफी ज्यादा बनते हैं, मेरा ख्याल 20,000 के करीब बनता है, उसमें से एक आलू की सब्जी हमें खिला देती हैं, ये एक अलग बात
0: है। सूद वसूल हो गया है।
1: वसूल हो गया। तो हमारे साथ निभा रहे वन एंड ओनली जेम्स लूक जी, वेलकम करते हैं आप।
2: जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हैप्पी थैंक्सगिविंग।
1: शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने लोगों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, तो कैसा महसूस होता है?
2: मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग सीखते हैं ना, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो लोग जो हैं वो भी पैसे बना सकते हैं।
1: अच्छा, बिल्कुल।
2: यू नो, सो देयर आर, मैंने कोई 100-200 लोग ट्रेन कर दिए पिछले 2-3 सालों में, तो अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे कि आप, पहला स्टेप आपने लेना है, क्योंकि आप मेरे पास आएंगे, मुझसे पूछेंगे, आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ऑनलाइन होता है, और जूम के ऊपर आप हमसे जुड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद आप ट्रेन हो जाते हैं। जब आप ट्रेन हो जाते हैं, फिर सारी जिंदगी के लिए आप पैसे बना सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इजी प्रोग्राम है, और ये सब के लिए है, जैसे आपने जिक्र किया शिवानी ने, कि ये बच्चे
1: किसी को 13,000 बना लिया, इन्होंने 13,000 बना लिया आपकी ट्रेनिंग की वजह से।
0: नहीं, मुझे एक्चुअली जेम्स जी ने कहा था कि 13,000 कुछ नहीं, आप उसके कहीं ज्यादा वर्थ किए, तो जब वो अचीव कर ले तब बताइए।
1: ये आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आज कोशिश कीजिएगा, बहुत पैसे बनेंगे।
2: आज के वो वीडियो भी आ जाती, मुझे पता है वो बहुत खूबसूरत, मैंने देखा हुआ है उनको, तो
1: तो जी, तो जेम्स लूक, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे शिवानी की तो उम्र अभी 21-22 साल है, तो जो लोग मेरे जैसे हैं, कोई 55-56 साल का, कोई 60 साल का, 61-62 साल का, तो उनके लिए भी ये कोर्स ठीक है, अच्छा है?
2: मैं कहता हूँ सबके लिए बिल्कुल अच्छा कोर्स है, रिटायर्ड लोग हों, घरेलू औरतें हों, यू नो, स्टूडेंट्स हों, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास, देखें, जब मैं कनाडा आया था ना, तो मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, तो उसने कहा जी एक तनख्वाह में आपका गुजारा यहाँ से मुश्किल होता है, अगर आप सही फाइनेंशियली फ्रीडम लेना चाहते हैं तो आपके पास 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए, और उससे 2 फायदे हैं, एक तो आपका यू नो, बड़ी अच्छी खुशी से आप रह सकते हैं, और दूसरी बात ये हो सकती है कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता कब ले ऑफ हो जाना, तो जैसे ही आप ले ऑफ हो, आपके पास एक एक्सपर्टीज है और आप उसको इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, कहीं जाना नहीं है, घर से बैठ के आपने करना है, और ये बहुत अच्छा कोर्स है और बड़ा आसान कोर्स है, और जो मैं इस वक्त हमने रखा हुआ वो डिस्काउंटेड प्राइस है, ये प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो आप मुझे फोन करें और आपको पता चलेगा कि कितना, यू नो, ये फ्यूचर्स कहते हैं इसको, ये फॉरेक्स की सिस्टम प्रोग्राम है।
1: मैं और ये जानना चाहता हूँ जेम्स लूक जी कि ये कोर्स आप कब कब करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, इन पर्सन है, ऑनलाइन है, और कितने फ्लेक्सिबल हैं आप टाइमिंग के एतबार से?
2: ये ऑनलाइन कोर्स होता है, और ये फ्लेक्सिबल इस तरह से है कि जो मेरे पास 3 या 4 स्टूडेंट आ जाए तो मैं शुरू कर देता हूँ कोर्स, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ 1 घंटे एवरी डे मंडे टू फ्राइडे, 1 घंटा आपने मुझे देना, क्योंकि एक घंटे में आपको मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि वो आपके हजम करने मुश्किल हो जाएगी। सो इसलिए उससे ज्यादा एक घंटा मैं आपको देता हूँ, वो फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन वो एक घंटा जो है वो होगा बिटवीन 11 एट द टाइम, यू नो 11 एंड 4, इससे पहले।
1: बिल्कुल सही,
2: क्योंकि उसको जितनी भी मार्केट है वो चलती है।
1: ठीक है, आपने शिवानी को तो ये काम सिखा दिया है, तो मुझे आपने नहीं सिखाया है, ये तो ठीक नहीं है जिम जी।
2: देखिए मैं अच्छे लोगों को, खूबसूरत लोगों को ज्यादा सिखाना चाहता हूँ।
1: फिर आप मुझे तो कभी नहीं सिखा पाएंगे जिम जी। यहाँ जेम्स लूक जी का फोन है।
0: जेम्स जी, इनकी काफी उम्र हो गई है, 65 प्लस, सो अब जो सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत सीख लें कुछ, तो आप प्लीज इन्हें सिखाइएगा।
2: नहीं नहीं,
1: मैं बीच में हूँ, ना शिवानी सिखाती है ना जेम्स जी सिखाते हैं।
2: ये ऐसे लोग जो है ना वो कमिटेड नहीं होते ना, वो भाग जाते हैं।
1: ऐसे लोग भाग जाते हैं।
0: इनकी कमिटमेंट लेवल्स बहुत ज्यादा है और बहुत स्कैटर्ड है ना, तो उनके लिए फोकस होना जरूरी है।
1: जेम्स जी मुझे घर से भागे वो भी 26 साल हो गए, बहुत बुलाते हैं वापस, लेकिन मैं नहीं जा पाता। यहाँ नंबर है जेम्स लूक जी का, ये मिला, ये बेधड़क मिला, ये और ये कोर्स कीजिए। तकरीबन 700 से 900 US डॉलर अ डे यू कैन मेक इट, एंड इट इज ट्रू। 416-454-2581 नंबर दोबारा बता रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, जेम्स लूक जी से बात कीजिए। 416-454-2581। बहुत बहुत शुक्रिया जेम्स जी आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू सो मच।
0: शुक्रिया,
1: बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया मेरे।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: और सह बात यह है कि हर लम्हा, हर पल, हर घड़ी, हर साथ शुक्र की है, तशक्कुर की है, ग्रेटिट्यूड की है। आप नेमतों का, रहमतों का शुमार करना चाहें, जिंदगी सारी बीत जाएगी, लेकिन इस जिंदगी के साथ जुड़ी हुई किसी एक नेमत का भी शुक्रिया आप अदा नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा, नायाब और कभी दोबारा ना मिलने वाला तोहफा है जिंदगी। और जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हर नेमत इस काबिल है, मुस्तहिक है, डिजर्व करती है कि शुक्रिया अदा किया जाए ऊपर वाले का। और ऊपर वाले के शुक्रिये का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उसके बंदों का शुक्रिया अदा किया जाए, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो किया जाए। और ऐसी एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है कि पूरा टोरंटो इनका शुक्रिया अदा करता रहता है। खासतौर पर वो लोग जो वक्त से पहले अपने बालों से महरूम हो गए थे, वो तो खास तौर पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी बदौलत, इनकी वजह से उनके सर पर बाल वापस आए हैं। उनकी शख्सियत को चार चांद लगे हैं, वो बेहतर दिखाई देते हैं, बेहतर सुनाई देते हैं, शख्सियत का एतमाद बहाल होता है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जफर मलिक। वेलकम करते हैं सर आपको।
5: खुश आमदीद है सबको जो भी आए। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां
4: तक पहुंचे।
5: बात यह है, बात बालों की है या चेहरे की है, असल बात नजाकत की है।
4: वाह,
5: आप लियाकत की बात करते हैं, लियाकत के पीछे नजाकत पड़ी रहती है।
4: वाह वाह,
5: नजाकत को सिर्फ लियाकत की जरूरत है। आप अपनी लियाकत से, किसी अल्लाह के करम से उस नेमत को अचीव करें, लोगों तक पहुंचाएं। तो हमने एक काम किया, अल्लाह ने करवा दिया कि हमने एक चीज बनाई जिसको फ्रेश एयर टॉनिक कहते हैं
4: जी।
5: ये आपके बालों को गिरने से रोकता ही नहीं, वापस उगाता भी है। अब बात आ गई, आज भी दो फोन आए थे सवेरे सवेरे, तो मैंने कहा बीबी आपके चेहरे और आपका जो जिल्द है सर की, वो बहुत नाजुक है।
4: नाजुक है।
5: तो उन्होंने कहा आप मुझे इसकी मिसाल दें, तो मैंने कहा कि उसने कहा था रात की चुप में मुझे मिले।
4: वाह वाह वाह,
5: उसने कहा था रात की चुप में मुझे मिलें, लेकिन हवा ने राह में पत्ते गिरा दिए। अब लोग इतने नाजुक हैं कि उनसे इतनी बारीक बात भी वो फिर आगे से आगे निकल जाती है। भाई हम सीधी सीधी क्रूड ऐसी बात करना चाहते हैं जो आपको फायदा पहुंचा दे।
4: कितने दिनों में बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं मुझे ये बताएं?
5: 3 दिन में आपको पता चल जाता है कि बाल झड़ने रुक चुके हैं।
4: रुक चुके हैं, अच्छा 3 दिन में
5: जी। और 6-7 दिन में आपको रीग्रोथ नजर आती है। अगर आपके चेहरे में कोई थोड़ी सी स्किन नजर आ रही है तो आज ही अपनी तस्वीर ले लें, ऑयल को इस्तेमाल करें और 10 दिन के बाद भी तस्वीर ले लें, आपके सारे आर्गुमेंट मेरे साथ खत्म हो जाएंगे।
4: आपकी तस्वीर अच्छी आती है या नहीं आती है, तस्वीर जरूर लें ताकि पता चल जाए कि फर्क क्या है, यानी 7 दिन पहले भी और 7 दिन बाद में भी। यहाँ जफर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, पिछले को तकरीबन 32 साल से ये काम कर रहे हैं और मैं खुद गवाह हूं इस बात का कि इनका नाम पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, यहाँ कनाडा में, इवन यूरोप तक इनका ये तेल जाता है। और कुछ लोग तो 10-10, 12-12, 15-15 की तादाद में सारे अहले खाना के लिए ये बोतल मंगवा लेते हैं। आप भी मंगवाइए। आज की खास ऑफर थैंक्स गिविंग के मौके पर आप क्या दे रहे हैं मलिक साहब?
5: जो आप कह दें।
4: ओहो नहीं जी, ये तो फिर काम शिवानी का ही है। आप मेरा कहा तो मोड़ सकते हैं, शिवानी का कहा नहीं मोड़ पाएंगे।
5: जी
4: शिवानी, क्या ऑफर होनी चाहिए आज?
6: आज जो क्रीम है ना आपकी, वो बहुत पॉपुलर क्रीम है जो चेहरे की एक्नी, ब्लेमिश सब खत्म करती है। तो पहले थोड़ा सा अपने क्रीम के बारे में बता के और वो बंडल पैकेज में कुछ ऑफर दे दें आप।
4: हाँ जी,
5: मैं करता। आप हमसे 2 बॉटल्स ऑयल की मंगा लें, एक क्रीम जो आप कहेंगे वो आपको फ्री दे देगा।
4: अरे वाह, उससे आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी,
5: सिर्फ
4: चेहरा नहीं, बड़ा
5: पिगमेंटेशन ठीक होएगी, रिंकल्स खत्म होंगे, आपकी एक्नी को खत्म करने के लिए
4: खत्म हो जाएंगी।
5: जी जी,
4: तो वो मुफ्त वाली एक फिर मुझे दे दे।
5: मुफ्त में तो सब मुफ्त में तो गाली भी नहीं दी जाती।
4: नहीं देखिए ना, आप कह रहे हैं कि दो बोतलों के साथ एक क्रीम आप फ्री देंगे, तो मैं कहता हूँ मैं आज दो बोतलें लेता हूँ, साथ में एक क्रीम मुझे फ्री, दैट्स व्हाट आई मीन।
5: अच्छा, आप मुझे क्या फोन आएंगे कि आप उसके अलावा हमें ऑयल ही नहीं दे सकते? तो भाई 2+1 ऑयल ले लीजिएगा। और बोले
4: अरे वाह वाह,
5: आज के दिन आज थैंक्सगिविंग है,
6: मतलब दो ऑयल का पे करके एक ऑयल और एक क्रीम फ्री?
5: नहीं,
6: अच्छा
5: एक ऑयल फ्री, साथ दो की बजाय तीन ऑयल आपके घर पहुंचा देंगे,
4: तो क्रीम
5: या दो ऑयल या फिर क्रीम पहुंचा।

0: चलें जी, आज के दिन जो भी आएगा दे देंगे।
1: वाह वाह, ये हुई ना, कहते हैं कि बड़े बात करते हैं छोटे मान रखते हैं, तो आज आपने ये काम किया। ये जफर मलिक साहब उम्र में मुझसे 1 साल छोटे हैं।
0: 81 वर्ष मेरी उम्र है, 81 ईयर्स का मैं हूँ।
1: 20 साल का फर्क है फिर।
0: 6 साल का?
1: नहीं, 20 साल का। यहाँ नंबर है जफर मलिक साहब का। आज तो वाकई मैं मान गया हूं जफर मलिक साहब को, उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफर दी है। 2 बोतलें आप लेंगे ऑयल की, साथ में एक ऑयल की बोतल फ्री होगी, साथ में एक क्रीम फ्री होगी, लेकिन वो आज के दिन के लिए होगा, आपके लिए होगा थैंक्स गिविंग के मौके पर। 647-521-5101

0: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है।
1: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी डोमिनिका में इनरोल करवाएं,
0: उसे डॉक्टर बनाएं। 20 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, नो एमकैट रिक्वायर्ड,
1: 90% पास रेट।
0: कॉल नाउ 416-743-9222
1: 416-743-9222
0: और विजिट allsaintsuniversity.org। All Saints University से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकता है।
2: क्या आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं पर टूल्स समझ नहीं आते? इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो एनरोल कीजिए रेडियो टोरंटो कनाडा के डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स में। सिर्फ 4 हफ्ते में बनिए डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल। ऑडियो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया, कॉन्टेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट, रील्स, सब कुछ सिर्फ 4 वीक्स में।
3: बी अ क्रिएटर ऑफ योर ओन कॉन्टेंट। बिगिनर से प्रोफेशनल डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बनने के सफर में आपका हम सफर। रेडियो टोरंटो कनाडा, बनिए टोरंटो की डिजिटल आवाज RTC के डिजिटल मीडिया कोर्स के साथ। कॉल 416-303-3639
4: मम्मा, why don't you go to work now?
5: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। 1 महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
6: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
5: क्या वो मदद करेंगे?
6: मदद करेंगे, उन्होंने
7: बेहतरीन के मेरे पास शब्द नहीं। मैं कैसे आपका थैंक यू।
8: व्हाट ब्रॉट यू टू सिंगिंग?
7: बेसिकली घर में गाने का माहौल था तो सभी गए, पापा भी सुनते सुनते मैं गाने लग गया। बचपन से पता नहीं चला फ्रेंड को।
8: वाह, यानी एक हादसा था, इत्तेफाक था, शौक था, क्या था?
7: शौक था।
8: अच्छा, शौक था
7: जी। स्कूल से गाते गए, फिर कॉलेज में गाया, फिर कामकाज में पड़ गए। अब आप मिल गए, अब आपके साथ गाएंगे कुछ।
8: सिंगिंग बड़ा चैलेंजिंग कैरियर है
7: जी, बिल्कुल।
8: तो कभी लगा कि इट्स नॉट फॉर मी, और आपको हमेशा लगा कि ये मेरे लिए?
7: बचपन से ऐसे था कि घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे तो इसको चूज नहीं करा। अब हालात सुधर गए।
8: घर के हालात ठीक नहीं थे और आपकी नीयत ठीक नहीं थी।
9: सेकंड वाला भारी पड़ गया।
8: शिवानी के पास आपके लिए बहुत से सवाल हैं
9: जी। बहन, हमारे स्टूडियो में सबसे पहले तो आपका स्वागत। और आप आज वैसे तो लाइक मुझे पर्सनली बोलूँ तो आई लाइक गजल्स, मुझे गजल्स बहुत पसंद है। लेकिन आमिर को 90s के गाने पसंद है, जफर साहब को
8: भंगड़ा
9: पसंद है, और हमारी एक और मेहमान यहाँ पे है आयजा। और आयजा, आपको क्या पसंद है?
10: सब कुछ पसंद है, मूड पे डिपेंड करता है।
9: आज आपका क्या मूड है? फिर हम अपनी फरमाइश करते
7: रहेंगे। पहले तो माँ का शुक्रिया जिसने,
8: अरे वाह बहुत प्यार,
7: उनके लिए कुछ गाना चाहूंगा
8: जी।
9: बिल्कुल,
7: पंजाबी में गा सकता हूँ?
8: ऑफ कोर्स,
9: बिल्कुल।
7: पहले वो आजकल बहुत फेमस है शिव कुमार जी का।
8: दुनिया में 2 चीजों, एक जापान की टेक्नोलॉजी, दूसरा
11: माए माए मेरे गीता दे नैणा बिच बिर होंगे माए नी माए मेरे रड़क पवे अद्धी अद्धी राती उठ रोना।

0: हैं और ऐसा गाते हैं कि उनको ये बिल्कुल हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो वॉशरूम में भी गाएं, बिल्कुल गाएं ही ना, यानी वो चुप ही रहे, गुंडे ही हो जाए, तो उनके लिए क्या सलाह है आपके? आप तो बड़ा पक्का करें।
1: नहीं, सलाह तो मेरी यही है, सीख के ही आना चाहिए गाने के लिए, क्योंकि ये आर्ट है और आर्ट की भी कदर नहीं करनी चाहिए कभी भी। अगर इसमें भी ऐसा है कि आपकी किस्मत भी हो, 70% किस्मत है आपकी, 30% आपका हार्ड वर्क है। अगर किस्मत चल गई तो फिर बाथरूम वाले भी गा रहे हैं, जो पत्ते गाते हैं वो तो ऐसे ही बैठे हैं, उनको तो कोई पूछ ही नहीं
0: पाता। शायद ये आप पर आश्कार नहीं है कि शिवानी बे इंतहा खूबसूरत गाती है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जितनी ये खुद खूबसूरत हैं, जितनी ये प्यारी हैं, जितनी दिलकश हैं, उससे कहीं बेहतर ये गाती भी हैं। तो अब मैं कभी कभी कंपैरिजन करता हूँ कि इनका चेहरा ज्यादा खूबसूरत है या इनकी आवाज। तो इसी मखमसे में मुझे काफी देर होगी को तकरीबन 4-5 साल में मैं नतीजा नहीं निकाल सका।
1: यहाँ जितने शख्स बैठे हैं सभी खूबसूरत हैं।
0: आपने आपने अपने आप को नहीं शामिल किया है जितने भी बैठे हैं सबको?
2: नहीं, इनका मतलब है कि हम किस दिन काम आएंगे ना, हम शामिल कर रहे हैं आपको। You're wholeheartedly शामिल इन दिस गुड लुकिंग रेस।
0: आपसे प्यार मोहब्बत

0: मम्मा, why don't you go to work now?
1: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
2: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
1: क्या वो मदद करेंगे?
2: मदद करेंगे, उन्होंने क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
3: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट। डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
2: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
3: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
4: सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नब्ज देकर सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा यहां पर इलाज किया जाता है। यहां इलाज कराने वाले लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, राइसिस और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जड़ से, जी हां, जड़ से इलाज किया जाता है। आज जी कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज जी को, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो। 6473278111, 6473278111।
5: घर लेना हो या करना हो रीफाइनेंस, अब मॉर्गेज की टेंशन को बोलो गुडबाय इन एडवांस। पहला मॉर्गेज हो या सेकंड मॉर्गेज का काम, सुखी कौर के साथ मिलेगा आसान समाधान। सेम डे क्लोजिंग हो या लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, हर मॉर्गेज सॉल्यूशन के लिए बस एक कॉल कीजिए। 5% हो, 10% हो या 15% डाउन पेमेंट, सही गाइडेंस के साथ आसान बने अरेंजमेंट। तो फिक्र कैसी, क्यों होना परेशान, बस सुखी को कीजिए कॉल। सुखी हैज सॉल्यूशन फॉर ऑल। बिल्कुल सही सुना आपने, सुखी कौर। कॉल 6474087066। फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल 6474087066।
6: क्या आप सुन रहे हैं?
7: क्या आप सुन रहे हैं?
6: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
7: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
6: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
8: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: क्या आप ओंटारियो में अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी पूरी तरह से कानूनी और बेफिकर होके? विवेक गुप्ता, जो 2012 से अपनी इंजीनियरिंग टीम के साथ लीगल बेसमेंट, मल्टी यूनिट कन्वर्जन्स, कमर्शियल परमिट और बिल्डिंग अप्रूवल के काम में लोगों की मदद कर रहे हैं। होम एक्सटेंशन जैसे पूल, डेक या गराज बनवाना हो या कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंटेशन और परमिट के लिए अभी कीजिए बात। विवेक गुप्ता हर पल आपके साथ। कॉल 6479731733। फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल 6479731733।
0: मम्मा, why don't you go to work now?
1: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
2: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
1: क्या वो मदद करेंगे?
2: मदद करेंगे, उन्होंने क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
3: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट। डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
2: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
3: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
5: क्या आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं पर टूल्स समझ नहीं आते? इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो एनरोल कीजिए रेडियो टोरंटो कनाडा के डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स में। सिर्फ 4 हफ्ते में बनिए डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल। ऑडियो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट, रील्स, सब कुछ सिर्फ 4 वीक्स में।
9: बी अ क्रिएटर ऑफ योर ओन कंटेंट। बिगिनर से प्रोफेशनल डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बनने के सफर में आपका हम सफर। रेडियो टोरंटो कनाडा, बनिए टोरंटो की डिजिटल आवाज। RTC के डिजिटल मीडिया कोर्स के साथ कॉल 416-303-3639, 416-303-3639।
6: क्या आप सुन रहे हैं?
7: क्या आप सुन रहे हैं?
6: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
7: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
6: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
8: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। 3639. It's 416-303-3639.
10: रेडियो टोरंटो कनाडा, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। 2:41 इज द टाइम, 2:41 का वक्त है और आज हम थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर हर दोपहर में हमारे साथ होते हैं और अपनी फरमाइशें भी भेजते हैं, आपके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और आपके बड़े फैन हैं लिसनर्स, और कहते हैं कि आमिर की जो आवाज़ है ना, कोई कहते हैं आमिर भाई साहब की आवाज़ है, कोई कहता है आमिर साहब की आवाज़ है, कोई कहता है आमिर भैया की आवाज़ है, कोई कहता है
11: आमिर चचा की आवाज़, कोई नहीं कहता।
10: नहीं नहीं नहीं,
11: आमिर ताया की आवाज़ कहते
10: हैं। आज आपने जो उम्र बताई है उसके बाद हमारे नए लिसनरशिप जुड़ेगी। अब तक यही कहते थे कि आपकी जो आवाज़ है, इतना लंबा आपको एक्सपीरियंस है ब्रॉडकास्टिंग का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी जो तारीफ की, इसमें से अगर मैं 10% भी जेन्युइन समझूं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच जिंदगी में हमारे रंगों में रंग भरने के लिए और हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। एक सबसे बड़ी चीज आपने, यू आर सच ए गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत कुछ सीखा है आपसे और उम्मीद है कि आगे भी सीखें।
11: देखिए, आप अपने अच्छा होने का इल्जाम मुझ पर ना दें, ये बहुत बड़ा इल्जाम है और मैं इसको ले नहीं सकता।
10: नहीं, ऐसे तो कोहोस्ट देते हैं ना एक दूसरे को, मतलब
11: अच्छा ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पर
10: देना बनता है ना, नहीं तो कहेंगे दिया ही नहीं, मतलब आधी अधूरी होस्टिंग हो गई है तो।
11: अच्छा, अगर मेरे सुनने वालों में से किसी ने ब्यूटी विद ब्रेन देखना,
10: अच्छा
11: एक तो कहीं ब्यूटी आपको मिल जाती है, कहीं आपको ब्रेन मिल जाता है, जो रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है दुनिया में वो ब्यूटी विद ब्रेन है, और वो इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं। अगर आप इनको देखना चाहें, इनसे बात करना चाहें, बात, वो कहते हैं कि वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो हम भी चल के देखते हैं।
10: क्या
11: मलिक साहब कोई ऐसी कड़वी कुसैली आड़ी तिरछी निराली बात करने वाले हैं कि सारी बात का असर जाहिल कर देंगे। जी मलिक साहब,
12: आप ब्यूटी को किससे मिला रहे थे?
11: ब्रेन से।
12: जी, सीधे सीधे
13: बात करो उर्दू का प्रोग्राम है, नजाकत और लियाकत का संबंध।
11: वाह, I like that.
13: ये दोनों चीजें शवानी जी में हैं जो आप में नहीं है, सॉरी।
11: देखा, ये मेरे मयार पे पूरा उतरे, मैंने कहा ये जलीकटी बात करेंगे।
10: जफर साहब, आमिर साहब के दो बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारे दोस्त यहाँ पे आए हैं और दे बोथ ऑफ देम आर वेरी अकम्प्लिश्ड, गोइंग टू बी लॉयर्स सून, तो वो आमिर के अभी सपोर्ट में खड़े हैं। अब तीन लॉयर से हम कैसे निपटेंगे, आप बताइए। आपने ऐसी
13: आपकी बात ठीक है, पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा,
11: इतना ही काफी।
13: पैदा हुए वकील
11: तो सुन रहे होंगे, नहीं कह,
13: शैतान ने कहा तो आज हम भी साहिब औलाद हो गए।
11: नहीं, ये नहीं कह सकते। मुझे बहुत से वकला, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे प्यारे, हमारे सज्जन मित्र यार, बहुत से वकील हैं और हमें सुन रहे हैं।
13: ये अकबर अलाहाबादी का,
11: हाँ, कहीं उनकी दिलाजारी ना हो। वकालत बहुत कमाल का बड़ा बावकार पेशा है और इसे लॉर्ड्स प्रोफेशन।
10: जी बिल्कुल,
13: अगर वकील सच्चा हो तो
11: वेल, आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा वाला करवाना है, झूठा या सच्चा। जी,
10: तो हम वापस लौटते हैं आज की खूबसूरत सी सिंगिंग सेगमेंट में और मेहर हमारे साथ हैं। मेहर, आपने बहुत अच्छी मदर के बारे में, माँ के बारे में एक बात कही और एक कुछ लाइनें थी। अब हम वापस आएंगे रोमांस के ऊपर और आमिर का जो फेवरेट टॉपिक है तो प्यार मोहब्बत रोमांस, और जिसमें उम्र से कोई लेना देना नहीं है। होठों से छू लो तुम मेरी बात, अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन।
11: वाह वाह,
10: नई रीत चला कर तुम ये प्रीत अमर कर दो।
11: बस मैं, मेरा हो गया आज का
10: प्रोग्राम। तो जरा इस टाइप की कोई गजल सुना दीजिए, ये या फिर कोई और।
11: अब ये सुनाएंगे तो मेरे मुंह से लफ्ज अब मजीद कैसे।
14: गजल में आपको चुपके चुपके सुना सकता हूँ, जहाँ पंजाबी को गाना कोई रोमांटिक।
10: हाँ, पंजाबी रोमांटिक।
11: हाँ, okay. पंजाबी रोमांटिक।
14: एक दिलजीत दोसांझ का गाना है वो,
10: एक कुड़ी जिस
14: नहीं, नहीं, नहीं। दिल दिया दिल विच सफेद अबल, पंजाबी समझ आंदी ना
11: जी। okay. बहुत अच्छे तरीके से।
14: दिल दिया दिल विच सफेद अबल, कहना भी चाहिए पर तावी चुप रहने, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਦੱਬ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ।

0: वैसे
1: क्या
0: आपने गाने में कहा कि आपको कहना नहीं आता,
1: जी,
0: तो कभी कहने का इत्तेफाक हुआ किसी को वैसे?
1: ये तो थोड़ा
0: कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला।
1: कॉम्प्लिकेटेड
0: कॉम्प्लिकेटेड है, पर्सनल है, प्राइवेट है।
1: जी। आजकल डिजिटल मीडिया ने ये इख्तिरा ईजाद की है कॉम्प्लिकेटेड, तो ये एक नया रिलेशनशिप निकला है। पहले तो शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा, बस दो ही थे।
0: अब सिचुएशनशिप
1: आजकल बहुत सी कैटेगरीज निकल
0: सो
1: आई बीच बीच में।
0: मैनी।
1: यस
0: नहीं, कई एक आंसर ये भी होता है, वेल यू नो
1: यू नो एक्चुअली इन
0: या
1: फैक्ट कॉन्सिक्वेंटली
0: व्हाट एवर, फिर उसको कहते हैं व्हाट एवर।
1: व्हाटएवर। तो अभी मलिक साहब भी हमारे साथ ही शामिल रहेंगे। शिवानी के पास एक बहुत सा गीत है तैयार, वो भी सुनने की कोशिश करेंगे। आज बहुत ही शानदार मूड में है शिवानी। पता नहीं आज थैंक्स गिविंग है इसलिए, या आज
0: आलू की
1: रिलैक्स
0: ओवरडोज
1: डे
0: खा
1: है,
0: कर आई
1: या
0: है
1: पता नहीं
0: ना।
1: आलू बहुत खा लिए इन्होंने।
0: आमिर एक बहुत प्यारा सा राइटअप है थैंक्स गिविंग की बात पे। एक सही स्टोरी है, शायद किसी ने शेयर की है, 100 ना की ताकत एक न सच्ची सीख, ये है टॉपिक का नाम।
1: अच्छा,
0: 100 ना, 100 टाइम्स ना बोलना या ना
1: अच्छा
0: सुनना।
1: सुनना ठीक है।
0: कल मेरे बेटे का फोन आया, किसी ने लिखा, वो आजकल यूरोप में है। उसने मुझे एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर मैं देर तक सोचता रहा कि ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, हम सबके लिए एक आईना है।
1: आई ना है, वाह
0: और मेरा बेटा एम्स्टर्डम में एक कॉस्को स्टोर गया था, हल्की सी ठंडक थी, लोग जल्दी अंदर बाहर जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा खड़ा था गेट पर, मुश्किल से 5 साल का होगा,
1: जी
0: हाथ में चिप्स के कुछ पैकेट और गले में एक छोटा सा बोर्ड लटका हुआ था। बोर्ड पर टेढ़े मेढ़े लफ्जों में लिखा था, स्काउट चैरिटी के लिए सिर्फ $20 में। वो चैरिटी के लिए इकट्ठे कर रहा था। लोग उसके बगल से गुजर रहे थे, कोई पैसे दे रहा था, कोई कह रहा था कि बेटा बाद में दे देंगे। वो सबसे कहता कि आप पैकेट लेंगे क्या, आप पैकेट खरीदेंगे, कोई कहता नहीं बेटा थैंक यू। और उसके ना कहने के बाद, ना सुनने के बाद भी वो मुस्कुराता हुआ, हल्के से सिर हिलाता और अगले इंसान की तरफ कॉन्फिडेंटली मुड़ जाता। उसके चेहरे पर ना कोई शर्म थी, ना कोई डर था, ना कोई डिसअपॉइंटमेंट था, सिर्फ एक अजीब सा सेल्फ कॉन्फिडेंस था। हमसे रहा नहीं गया और मेरे बेटे ने उससे पूछा कि तुम इतने पैकेट तुम्हें बेचने हैं, तुम कब तक खड़े रहोगे?
1: खड़े रहोगे? हाँ
0: तो बच्चे ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। उसने कहा, जब तक 100 लोग मुझे नो नहीं कह देते मैं यहाँ खड़ा रहूंगा।
1: अरे वाह वाह वाह,
0: और
1: पक्की बात है।
0: ये बात सुन के उसकी टीचर आई, उसने कहा, हमारा मकसद पैकेट बेचना नहीं है, हमारा मकसद है कि बच्चा इस उम्र में ना सुनना सीखे, है ना, ना को सुनकर
1: वाह
0: उसे
1: वाह
0: एक्सेप्ट
1: वाह
0: करना सीखे और
1: वाह,
0: अगले इंसान से पूछने की हिम्मत फिर जुटाए, है ना।
1: वाह
0: और हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, खूब पढ़ो, फर्स्ट आओ, कंपटीशन जीतो, सेलेक्ट हो जाओ, सबसे आगे निकलो, और हम बच्चे को प्रेशराइज करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे हर दिन स्कूल में माँ बाप की उम्मीदें लेके जाता
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: सही।
0: हम उन्हें ये सिखाना, हमें उनको ये सिखाना चाहिए कि बेटा जिंदगी हमेशा हाँ नहीं कहेगी।
1: और ये भी सिखाना चाहिए शिवानी के, अगर बेरोजगार है, काम करने के लिए नहीं है आपके पास कोई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, तरद्दुद करें, हिम्मत करें,
0: जी
1: हीला करें तो वसीला हो
0: बिल्कुल
1: जाएगा।
0: सही।
1: और अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट से कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। और इस मुल्क में सबसे ज्यादा पैसा हमारी कम्युनिटीज में से बनाया लोगों ने टैक्सी में,
0: क्या बात है, बिल्कुल सही।
1: और आज भी बना रहे हैं। और ये मुझे लगता है हर तरह का पेशा एआई की वजह से मुतासिर होगा, ये नहीं होगा, ये चलता रहेगा मामला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनकी गुफ्तगू बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप अपना कारोबार करना चाहते हैं, फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, या आप दफ्तर जाते हैं और खाली ही चले जाते हैं, दो लोगों को चार लोगों को लेके भी जा सकते हैं,
0: सही
1: आपका पैसा गैस का, इंश्योरेंस का और आपका जेब खर्च सब पूरा हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली अनवर वारसी, वेलकम करते हैं सर आप।
2: थैंक यू अमित जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग ऑन द रेडियो।
1: अनवर साहब, बहुत अच्छा काम है, हमें एज प्लेटफॉर्म भी फीडबैक मिलता रहता है, लोग हमसे आपका नंबर मांगते हैं। हमें जरा सा इन नटशेल बता दीजिए कि ये प्रोजेक्ट क्या है और कैसे काम करता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने अमीर भाई, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप रात दिन गाड़ी चलाते हैं, अगर आपके पास गाड़ी है तो बड़ी आसान चीज़ है, किसी भी एक बंदे को आप राइड देते हैं जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके जो गैस का खर्चा है, आपका इंश्योरेंस का जो खर्चा है, ये सब जो है निकल जाता है। और जो वो आप फ्लेक्सिबल हैं, जितना प्राइस रखना चाहते हैं राइड का, तो आप 15, 20, 25, 30 जितने भी रख दें, कहाँ जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पहली चीज है। तो मैं तमाम लोगों से कहता हूँ जो भी हैं, जैसे कि प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, रियल एस्टेट एजेंट हैं, क्लाइंट को दिखने जा रहे हैं, अब बोलते हैं इतनी दूर जाएंगे घर दिखाएंगे पता नहीं क्लाइंट ले या ना ले, तो आने जाने का टाइम और गैस का खर्चा हो जाता है। ये जो प्राइसेस बढ़ गई हैं गैस की अमित भाई, इसकी वजह से लोग परेशान हैं, इंश्योरेंस की प्राइसेस बढ़ गई हैं, परेशान हैं। तो मैं कहता हूँ बढ़ने दो, दो हो जाने दो, ढाई डॉलर हो जाने दो, कोई मसला नहीं, लेकिन आप हमें ज्वाइन कर लो, फिर आप हंसी हंसी गैस डालोगे।
1: बिल्कुल सही।
2: तो ये खास बात इसकी। और दूसरा, इसमें जो हमने प्रोग्राम रखा है कि आप एक अपनी टेरिटरी ले सकते हैं, और वो टेरिटरी लेके मतलब कोई भी एक सिटी की राइट्स ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी तक नॉर्थ अमेरिका में, मतलब बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ अमीर भाई, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, गूगल कर लीजिएगा, वी आर द फर्स्ट वन इन नॉर्थ अमेरिका हु इज ऑफरिंग अ राइट शेयरिंग फ्रेंचाइज। लोगों का ड्रीम रहता है कि हम डालें, हम ये करें, लेकिन नहीं है किसी के पास ऑप्शन। हम पहली बार लेकर आए स्टार्टिंग फ्रॉम 7,500 से 12,500 और 25,000, हमारे पास हर पैकेज अवेलेबल।
1: वेरी नाइस। यानी अगर किसी शहर, किसी कस्बे, किसी एरिया, छोटे से इलाके की कोई मेंबरशिप लेना चाहे या फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो ये पॉसिबल है और कम पैसों में भी मिल जाती है। ये नंबर मिलाइए 647-770-4673। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको 647-770-4673। वारसी साहब, थोड़ा हमें ये बताइएगा कि वो लोग जो घर से दफ्तर जाते हैं, काम की जगह पे जाते हैं, खाली चले जाते हैं, और भी सर्विसेज शायद काम कर रही हूं इसी तरह की मार्केट में, तो आप में और उनमें क्या फर्क है?
2: हमारे में उसमें ये फर्क है, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया अमीर भाई आपने, ये अक्सर क्लाइंट मुझे पूछते ही रहते हैं, अक्सर पूछते रहते हैं। तो हमारे में और दूसरों में ये फर्क है कि हम जो है दो चीजों में अलग है। पहली चीज ये है कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाते हैं, मतलब आपको चार पांच बंदों को अलग अलग जगह से नहीं लेना पड़ता, या चार पांच बंदों को कार में नहीं बिठाना पड़ता, आप सिर्फ एक ही शख्सियत को एक ही जगह से एक बंदे को, या उसी जगह से उस फैमिली के दो तीन बंदों को ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होता अमीर भाई। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं काम करने जा रहा हूँ यार, ये झंझट में नहीं पड़ो, छोड़ो यार उसको, उठाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, छोड़ेंगे फिर मेरी जॉब में लेट हो जाऊंगा, ये वाला मसला हमारे साथ नहीं है।
1: नहीं है बिल्कुल।
2: क्योंकि आपने पॉइंट ए से उठाया, पॉइंट बी पे छोड़ दिया, ये पहली बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि लोग अक्सर फिर भी नहीं समझ पाते है क्या चीज, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ। ऐसा समझिए थोड़ी देर के लिए कि किसी सिटी के अंदर आप एक टैक्सी की ब्रोकरेज डाल रहे हैं, और वो टैक्सी जो है पूरी आपकी है ना अंडर में चलेगी, और उसका सारा प्रॉफिट आपका होगा। तो काइंड ऑफ ये माहौल है।
1: वारसी साहब, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स्ट्रा टाइम काम भी नहीं करना पड़ेगा, जिस दफ्तर में आप जा रहे हैं, जिस काम की जगह पे आप जा रहे हैं वहीं जाएंगे, कोई ज्यादा कंजम्पशन ऑफ टाइम नहीं है, और आपके महीने के $1,200-1,500 बन सकते हैं पॉसिबली?
2: बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई, ये मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ जो लोग गाड़ी लेना चाहते हैं और अभी तक नहीं ली है, तो प्लीज उनको रिकमेंड करना, एक बार जरूर फोन करें, हम लोन दिलाएंगे, हम गारंटी देंगे, हम उस कार का इंस्टॉलमेंट भी हम ही भरेंगे, सिर्फ आप एक बार ज्वाइन करके देखिए।
1: अच्छा, गाड़ी नहीं है किसी के पास तो आप गाड़ी दिलाने में भी मदद करेंगे?
2: गाड़ी दिलाएंगे, उसकी गाड़ी दिलाने का जो इंस्टॉलमेंट है गाड़ी का वो भी हम देंगे।
1: अरे वाह वाह,
2: मतलब गाड़ी का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, लिख के देंगे पेपर के ऊपर, वर्बल नहीं होगा, लिख के देंगे कि हाँ इसका इंस्टॉलमेंट आप कंपनी भरेगी।
1: बिल्कुल सही, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी यही देंगे, गाड़ी भी यही दिलाएंगे, और पैसा भी आपका बनेगा। आप एज अ ड्राइवर शामिल होना चाहते हैं या एज अ फ्रेंचाइजी, यानी आप बड़े शहर मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है, ओकविल है, बर्लिंगटन है, हैमिल्टन है, मान लीजिए एक शहर में से अगर दिन की 500 राइड जाती हैं और आपको एक राइड में से $5 ही बचते हैं, तो कितना पैसा बन जाता है एक ही दिन में, लॉट्स ऑफ मनी इन्वॉल्व। अभी बात कीजिए, आज ही अभी अनवर वारसी का नंबर दे रहा हूं, बात कीजिएगा इनके साथ फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए 647-770-4673। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको 647-770-4673। 647-770-4673-670-4673-670-4673 आपके नंबर हमसे भी ले सकते हैं बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया वारसी साहब आपके।
2: थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
0: और आमिर जो वारसी साहब है ना, उनमें एक टैलेंट है आपको पता है,
1: क्या
0: वो बिल्कुल आपकी तरह नंबर बता देते हैं। लास्ट वीक आप नहीं थे तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया और आखिर में मैंने कहा वारसी साहब आज आप स्टूडियो आप आए हैं तो आज खुद अपना नंबर बताइए, तो कहते हाँ हाँ बिल्कुल आमिर जी की तरह बताता हूँ, और उन्होंने बिल्कुल आपकी तरह नंबर बताया।
1: चले, कोई तो है जो हमें गौर से
0: तो
1: सुनता
0: इसी के साथ अब आपसे लेते हैं इजाजत। थैंक यू सो वेरी मच, और एक बार फिर से थैंक्स गिविंग में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जिंदगी का रोज हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ कल होती है मुलाकात 416-303-3639। नमस्कार
1: साहब, अगर आप मोहब्बत के पैमाने की बात करते हैं, चाहे वो ऊपर वाले से हो, चाहे किसी इंसान से हो, चाहे किसी शय से हो, किसी रुत, किसी मौसम, किसी घड़ी से हो, परख दो ही बातों पर होती है। आजमाइश पर पूरा दो ही बातों के बाद उतरते हैं, या तो सब्र है या शुक्र है। पैमाने सिर्फ दो हैं, जो इन पर पूरा उतरता है वो इश्क की हर बाजी जीत जाता है। अपना ध्यान रखिए। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से शिवानी और आमिर को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे अहेड एंड हे यू, आई लव यू एंड हियर इज मैरी।

0: जाती है, तो आपको मेंटर के साथ बिठाया जाता है, हमारे सात मेंटर्स हैं ग्लोबली आपके साथ बैठे होते हैं। नंबर टू कि आपको अपना पैसा ट्रेडिंग में नहीं लगाना, 2023 के बाद बहुत सारी ऐसी फर्म्स आ गई हैं जो आपको एज ए ट्रेडर हायर कर लेती हैं, तो आपने बिल्कुल अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, तो अब आपको एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं है। और एआई के पावर की वजह से अब ट्रेडिंग आसान हो गई है। अब वो जो क्रूड वे ऑफ ट्रेडिंग था अबाउट 3 साल से बहुत मेगा चेंजेस आई है।
1: That is so wonderful. अब राफी जी, कोई अगर ये काम करना

0: चाहे तो रोजाना कितना वक्त देना पड़ता है उनको, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम स्टार्ट किया जाए।
1: जी एब्सोल्युटली, मैं सारों को यही रेकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट करें पार्ट टाइम। मार्केट 23 आवर्स अ डे खुली होती है, आप किसी वक्त ट्रेड कर सकते हैं। हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि अभी इवनिंग सेशंस में भी लोगों को लेके आ रहे हैं, तो नो मोर देन कपल आवर्स अ डे इज गुड इनफ। और आपको सिग्नल्स 23 आवर्स मिलते रहेंगे, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आए, सीख लें कि आपने क्या करना है, और रेस्ट इज वेरी इजी।
0: वंडरफुल। तो राफी जी, कैसे आपको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या रहेगा पहला स्टेप?
1: पहला स्टेप तो ये है, हमने 5 मिनट का इंटरव्यू किया है, 5 घंटे का सेमिनार होता है, चीजों को दिखाया जाता है, बताया जाता है, ऑफिस है आए। तो एवरी सैटरडे दोनों लोकेशंस पे आप जाके विजिट करें, और अगर वैसे ही देखना है तो मंडे टू फ्राइडे आप हमारे ट्रिनिटी ऑफिस में आके वैसे ही वॉक इन करके देख लें कि माहौल क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू कम टू द सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट, लिसन, इफ इट मेक्स सेंस टू यू देन ज्वाइन।
0: वंडरफुल। सो वेल दोस्तों, विजिट कीजिएगा वेबसाइट winlifetime.com, नंबर नोट कीजिए और जल्दी से डायल करें आने वाले सैटरडे फ्री सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए 9052061008, दैट्स 9052061008। राफी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपसे फिर जुड़ेंगे बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू जी, टेक केयर।
0: यू टू।
2: Jamming as much variety into your workday as possible. Radio Resync complete. Hit music. Hit after hot hit.
0: ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स। दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक। स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग। स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ। और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600। दोस्तों, बड़े शुभ दिन शुरू हो चुके हैं नवरात्रे के, बहुत बहुत बहुत ऊपर वाले की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, ऐसी ही हम आशा करते हैं। और कहते हैं कि जब मन में श्रद्धा हो, दिल में विश्वास हो और जीवन में मां दुर्गा का आशीर्वाद हो, तो मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और नवरात्रि का ये पावन पर्व हमें याद दिलाता है कि शक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हम सबके भीतर भी बसती है। कहते हैं कि माँ के चरणों में जो अपना सिर झुकाता है, हर मुश्किल में वो नया रास्ता पाता है। जिस दिल में बसता है माँ का विश्वास, उसके जीवन में कभी नहीं बुझती है आस। और चलते हैं खूबसूरत से भजन की तरफ, उसके बाद शुरू करेंगे आज का लाइव म्यूजिक मस्ती की रेलगाड़ी पर।

0: अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
0: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: क्या आप अपनी लव लाइफ, मैरिज, करियर, हेल्थ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं? तो एक्यूरेट पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के जरिए पाइए अपने जीवन और आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की गाइडेंस। चाइल्डलेस कपल्स के लिए भी स्पेशल कंसल्टेशन अवेलेबल है। कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ पंडित रामकृष्ण आपकी सिचुएशन को समझकर सही गाइडेंस और सॉल्यूशंस देने का प्रयास करते हैं। अपनी पर्सनल पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस के लिए आज ही कॉल करें पंडित रामकृष्ण 437-882-0639। That's 437-882-0639। Hashtag Holmes and Rahul Kashyap आपके लिए लेकर आए हैं Brampton and Caledon border पर at Mayfield and Gore freehold towns from mid 700s, semis from mid 800s and detached homes from mid 900s. Master plan community of 2500 homes with cricket pitch, tennis, basketball and pickleball courts, dog park and kids splash pads as neighborhood amenities. Only 10% deposit over 365 days and closing later 2027 to early 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844.
3: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स?
4: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
3: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
4: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुंचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
3: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: हेलो,
3: तो आपका क्रिस्टल क्लियर वॉइस बहुत अच्छा लगता है ना, क्लियर कट और क्रिस्टल क्लियर वॉइस।
2: मैं सफिया बोल रही हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आप तो कि यहाँ पे ये पुराने गाने जो लगाते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और वेदर मैं जरूर सुनती हूँ। प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और इसमें काफी सारी बहुत अच्छी बातें हैं। जब मैं जॉब से आती हूँ तो मैंने लगाया होता है, मैं सुनती रहती हूँ सारी बातें। आप सब लॉयर्स को बुलाते हैं और कोई आप अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं।
4: Your quote of the day and promotions that you advertise on the thing, and it's nicely done.

0: वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर शालिनी आप लोगों का वेलकम करती है ऑन सीएमआर एफएम 101.3। और आज है मंडे का खूबसूरत सा दिन और हमारे साथ है इन स्टूडियो रिनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर फारूक आबिद जी। आप लोगों की भारी भारी फरमाइश पर हमारे साथ फिर से जुड़े हैं फारूक जी और लाइव म्यूजिक होगा पूरे 4 बजे तक, जैसा आप गिटार की आवाज भी सुन रहे हैं। और फारूक जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन टुडे।
1: शालिनी, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड, हाउ आर यू?
1: फाइन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाउ आर यू? आप कैसे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और आज तो लॉन्ग वीकेंड है फारूक जी, और हमारे जो लिसनर्स है ना, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे और कह रहे थे कि फारूक जी कब आएंगे। और आई नो आप भी बड़ी बिजी पर्सनालिटी हैं और बहुत बिजी हो चुके थे, तो इस वजह से आपको बड़ा मिस किया। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
1: बस मैं तो, आपकी आजकल दिवाली भी हो रही है।
0: जी जी, आने वाली है,
1: मुबारकबाद।
0: जी जी,
1: ठीक है। बस जिंदगी बस यही है कि इंसान अपने आप को मेरे ख्याल से सीखने वाला मूड रखे।
0: That's right.
1: ठीक है, आई बिलीव इन दैट कि आदमी बिल्कुल बिगिनर्स माइंड रखे।
0: That's right.
1: ठीक है,
0: yeah.
1: जो आदमी सीखा होता है वो तो हर रोज एक नया दिन है,
0: बिल्कुल
1: नए लोग हैं,
0: राइट right.
1: नया इंसान है। तो अपने आप को बिल्कुल ऐसा रखें जैसे कि आप कुछ यू नो यू लर्निंग फ्रॉम पीपल, क्योंकि जिंदगी यही है। यू नो वी आर ऑल गेस्ट इन दिस वर्ल्ड,
0: बिल्कुल
1: थोड़े अरसे के लिए हैं सारे लोग। और जिस दिन रियलिटी के इंसान को पता चल जाता है कि वी आर नॉट परमानेंट हियर, तो फिर वो इंसान अच्छा इंसान बनता है,
0: दैट्स राइट,
1: और फिर वो ना झूठ बोलता है,
0: सही बात है,
1: ना चलाकी करता है, क्योंकि वो सब कुछ यही रह जाना है।
0: सही बात
1: तो
0: है,
1: फिर म्यूजिक हम लोगों को ये चीज सिखाता है कि
0: बिल्कुल
1: म्यूजिक आपके अंदर जैसे प्योरिटी है, इंसानियत है,
0: वेरी इंपॉर्टेंट,
1: दैट इज वेरी वेरी यू नो। और हम म्यूजिक करते रहते हैं, जिंगल्स बनाते हैं, एड बनाते हैं।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, कोई भी अपना गाना रिकॉर्ड करना चाहते हो, आप सिंगल अपना रिकॉर्ड करना चाहते हो, म्यूजिक बनाना चाहते हो, अपनी जिंगल्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, पॉडकास्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो, फारूक जी से आप बात कर सकते हैं। बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो है इन द हार्ट ऑफ मिसिसागा। और आप नंबर नोट कर लें, कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं,
1: 1605, 1605, 1605। जिससे आप सीखते हो, यू नो देर बहुत जरूरी चीजें होती है।
0: थैंक यू सो मच फारूक जी। और हमारे जो लिसनर्स है ना, यू नो उन्होंने बड़ी सारी फरमाइशें भेजी हुई हैं, तो बड़ी सारी फरमाइशें हैं, तो कौन से गाने के साथ आज शुरुआत करते हैं?
1: शुरू करते हैं,
0: अजीब दास्तान है ये जरूर।

0: क्या बात है फर्जी, अमेजिंग अमेजिंग। और बहुत सारे लिसनर्स के मैसेजेस आ चुके हैं, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कलगी आपका मैसेज आया, यू आर एंजॉयिंग आवर शो, थैंक यू। और साथ ही मुकेश आपका भी मैसेज आया, और आपने गाने की फरमाइश हमें ऑलरेडी भेज दी है, एंड लेट्स सी आपकी फरमाइश हम कितनी जल्दी पूरी करते हैं।
1: वो भी एक बहुत अच्छा गान गाना है, पल पल वो याद है आपको?
0: ला ला ला ला ला ला ला ला, जरूर जरूर,
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल।

0: थैंक यू सो मच आरती, आपका मैसेज आया और साथ ही नाहिद आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं मस्ती की रेल गाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3। स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
2: सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा यहां पर इलाज किया जाता है। यहां इलाज कराने वाले लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, राइसेस और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जड़ से, जी हाँ जड़ से इलाज किया जाता है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज जी को, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो, 6473278111, 6473278111।
3: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808।
4: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
5: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
6: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟ੍ਰਸਟ।

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर कैनेडा वाइड। घर हो या बिजनेस, अगर आपको चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स, तो आज ही कांटेक्ट करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। टॉप क्वालिटी मटेरियल, स्टाइलिश मॉडर्न डिजाइंस और कंपेटिटिव प्राइसिंग। चाहे बनवाना हो सनरूम या कस्टम कैनोपी, हर सोल्यूशन मिलता है प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ। अपनी आउटडोर स्पेस को बनाइए और ज्यादा फंक्शनल एंड ब्यूटिफुल। कॉल करें 416-831-4790, 416-831-4790, और विजिट 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन। कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, स्टाइल भी, प्रोटेक्शन भी।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
3: मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMRFM 101.3। आप हैं मेरे यानी शालिनी के साथ, और हमारे साथ इन स्टूडियो एक बहुत ही प्यारी सी मेहमान जुड़ने लगी हैं, और उससे पहले उनका वेलकम करने के लिए एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ही फरमाइश पर हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और मेरे साथ हैं फरुख जी अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ। फरुख जी, व्हाट्स द नेक्स्ट वन?

0: और दोस्तों ये गाना बड़ा फिट बैठता है जब आपके पास ना बड़ा प्यारा सा हमसफर हो, तो ये गाना गाते रहिए, हमसफर बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि matchfinders.ca की टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर फरवाइन स्टूडियो पहुंचने लगे हैं और उनसे करेंगे हम प्यारी सी बातचीत। और फरुख जी, फिर गाने का सिलसिला हम यू नो कंटिन्यू रखेंगे पूरे 4 बजे तक मस्ती की रेलगाड़ी पर। छोटा सा टाइनी सा ब्रेक दोस्तों, आई बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
3: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
2: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
4: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
5: वेलकम बैक टू मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMRFM 101.3. दोस्तों हमारे साथ मैच फाइंडर्स की टीम जुड़ चुकी है. डॉक्टर परवा इज हियर विद मी इन स्टूडियो. How are you, Dr. Parva?
6: All good. Thank you so much, Shalini. You're looking lovely.
5: You too. और बड़ा अच्छा लगता है कि जब लाइक माइंडेड लोगों के साथ हम बैठते हैं और इनफैक्ट जब हम बात करते हैं ना डॉक्टर परवा हमारी जिंदगी के हम सफर की तो उसमें तो लाइक माइंडेड होना बड़ा जरूरी है क्योंकि रोजाना उसके साथ रहना है, रोजाना उसकी शक्ल देखनी है. तो साथ मिलकर अगर जिंदगी काटनी है तो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं तो हमारे आइडियाज मैच होने चाहिए
6: जी.
5: तो matchfinders.ca दोस्तों ये वेबसाइट है, जरूर विजिट कीजिएगा. और डॉक्टर परवा मैं चाहूंगी आज अपनी आवाज में अपना नंबर, हमारे सोशल मीडिया पर लाइव देख रहे हैं लोग और रेडियो पर भी आपकी आवाज सुन रहे हैं, जरूर बताइए
6: जी. 6477017973
5: जी. तो डॉक्टर फरवाद क्या आपका प्रोसेस रहता है और कैसे आप लोगों को एक दूसरे के करीब लाती हैं, फैमिलीज को एक दूसरे के करीब लाती हैं?
6: जी मेरा सारा थॉट प्रोसेस उसमें यही था कि लोगों को करीब लाया जाए, लोगों को हेल्प की जाए. पता है हर घर में एक यंगर सिस्टर होती है, एक आउटगोइंग सिस्टर होती है, सब चीजों में हेल्प करा रही होती है और हर चीज पे उसे कॉल की जाती है कि ये चेक करो ये क्या हो रहा है.
5: दैट्स राइट.
6: इवन रिश्ता होने के बाद भी उसे कहा जाता है लड़के ने ये बोल दिया आप क्या बोलना है.
5: दैट्स राइट. बिल्कुल बिल्कुल.
6: वो वाली यंगर सिस्टर है मुझे सब लोगों को चाहिए है. सो जिनके पास वो यंगर सिस्टर नहीं है दे हैव टू कम टू मी.
5: वाओ
6: कितनी अच्छी बात है ना कि आपकी एक सिस्टर है जो आपके लिए सारा फुटवर्क कर सकती है और हर चीज का हल ढूंढ सकती है.
5: गॉड सेंट. व्हाई नॉट. गॉड सेंट फॉर द फैमिली.
6: हां तो व्हाई नॉट. एक आप कॉल करें और उसके बाद एक सिस्टर आपके पास है तो व्हाई नॉट.
5: हाउ स्वीट. वेरी नाइस. और आप ना जैसा आप कह रही हैं यू लिटरली मीन इट डॉक्टर परवा. और आप जो है ना एज अ फैमिली मेंबर दूसरों के साथ हाथ में हाथ डाल के चलती हैं और आसान काम नहीं है क्योंकि दो फैमिलीज बिल्कुल अलग किस्म की होती हैं. तो और दूसरी बात आप अलग अलग कम्युनिटीज से डील करती हैं डॉक्टर परवा. हाउ डू यू डू दैट? किस तरह से होता है सारा?
6: मैं बताती हूं, समटाइम्स पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ता
5: है. जी
6: जी. टफेस्ट पार्ट ऑफ
5: यस
6: सीरियसली पेरेंट्स से बात करना थोड़ा टफ हो जाता है. कैंडिडेट से बात करना मेरे लिए इजी है क्योंकि उनकी विशेष मैंने देखनी है.
5: राइट राइट.
6: लेकिन जब पेरेंट्स के अंदर मिक्स होती है तो इट गेट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड
5: क्योंकि बच्चे कुछ और चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं. तो दोनों के बीच
6: सिर्फ ये नहीं कि कुछ और चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन में फर्क.
5: अच्छा ओके. समझाने में. राइट राइट.
6: आप फर्स्ट पर्सन है उनसे बात कर रही है लेकिन जो पेरेंट्स है उनसे कुछ और परसीव कर रहे हैं.
5: राइट राइट राइट.
6: तो वो उस तरह से बात कर रहे हैं फिर मुझे थोड़ा हो जाता है कॉम्प्लिकेट. इट्स ऑल गुड. आई एम द यंगर सिस्टर एज आई टोल्ड यू.
5: ऑसम.
6: तो ये मुझे बहुत मजा आ रहा है इस चीज में.
5: वाओ.
6: और स्पेशली जब सारी कम्युनिटीज आती है तो बहुत मजा आता है क्योंकि हर कोई प्यार दे रहा है तो इट फील्स लाइक अ बिग फैमिली.
5: दैट्स राइट. यहाँ पर आपका नंबर मैं एक बार फिर से अनाउंस कर दूं, 6477017973 is the website to visit. अब डॉक्टर परवा कौन कौन से ऐसे चुनिंदा मैचेस हैं जिनके बारे में आप आज हमारे सोशल मीडिया पे हमारे व्यूअर्स को और हमारे लिसनर्स को बताना चाहोगे?
6: शालिनी मैं ये बताना चाहूंगी व्यूअर्स को कि मेरे पास गुजराती, मलयाली, पाकिस्तानी, पंजाबी हर तरह के प्रपोजल.
5: oh, wow. अच्छा.
6: मतलब क्या ही हर दफा करूँ की हर दफा दो के नाम लेके चली जाती हूँ. नॉट फेयर. तो इतने ज्यादा सारे लोग हैं तो मैंने इस दफा कम्युनिटीज का बताऊं कि मेरे पास इन सब कम्युनिटीज के लोग हैं. सो डू कॉन्टेक्ट मी. मतलब क्या ही रह जाएगा अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो क्या चला जाएगा।
5: अच्छा, एक आपने डॉक्टर साहब बताए थे तो उनके लिए काफी मैसेजेस आए हमारे पास, क्या उनको अपनी मन पसंदीदा लाइफ पार्टनर मिल गई?
6: हम प्रोसेस में हैं अभी।
5: प्रोसेस में, ओके।
6: जाहिर है वो, यस, या
5: जी जी,
6: बोथ साइड्स हैव टू गेट कंफर्टेबल, दैट्स
5: राइट, एब्सोल्युटली। तो वेल दोस्तों, बहुत सारे मैचेस हैं इंडिया के, बहुत सारे पाकिस्तान के, कई सारी गर्ल्स हैं एलिजिबल बैचलर्स हैं, कई सारे बॉयज हैं, तो भाई matchfinders.ca विजिट करें। और नंबर फिर से बता दूं, 6477017973। एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू ऐड?
6: मैं ये कहना चाहूंगी कि आप डेटिंग एप्स पे जाके जो टाइम जाया कर रहे हैं ना, वहाँ होते हैं भंवरे, भंवरे को हर फूल पसंद होता है, राइट?
5: बट लॉ शॉर्ट टर्म के लिए,
6: हाँ,
5: शॉर्ट टर्म
6: भंवरे से कमिटमेंट लेना बहुत मुश्किल काम है,
5: दैट्स राइट।
6: तो सीरियस जगह पर आइए, वी हैव नथिंग टू लूज, राइट?
5: यस यस,
6: आप एक कॉल करें, बात करें, देयर इज नथिंग टू लूज,
5: बिल्कुल।
6: उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, प्रोसेस कैसे रहता है, और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं,
5: राइट?
6: वहां से हम आपको लेके चलते हैं, तो एक सीरियस वे में। हमारे पास जो लोग रजिस्टर करते हैं, ऑफ कोर्स दे आर सीरियस, तो जब आपको कोई प्रपोजल दिखाएंगे तो ऑफ कोर्स सीरियस लोग हैं, उनसे आपको कमिटमेंट लेने में टाइम नहीं लगेगा,
5: बिल्कुल सही बात है।
6: तो अगर आप सीरियस हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड, तो डू कॉन्टैक्ट,
5: एब्सोल्युटली। और इस नंबर पे एक हेलो का मैसेज भेज दें, दैट्स इट, और आपके पास पूरा प्रोफाइल आ जाएगा मैच फाइंडर्स का। फिर जो है डॉक्टर फरवा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगी मैच फाइंडर्स की तरफ से, पूरे प्रोफाइल आप तक पहुंचेंगे और फिर आप डिसीजन लीजिएगा। 6477017973 है नंबर, 6477017973 is the website to visit. Thank you so much, Dr. Farwa, for joining us today.
6: Thank you, Shalini. आज तो बहुत ही मजे का म्यूजिक बज रहा है, बहुत मजा आया।
5: Thank you. और आपकी कुछ और फरमाइशें हैं जो अब हम पूरी करने जा रहे हैं, so thank you so much for joining us.
6: Thank you so
5: All
6: much.
5: The best. Well, दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे मस्ती की रेलगाड़ी पर, we'll be right back. Stay tuned.
3: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
7: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s। मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज। ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू अर्ली 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844. क्या आप अपनी लव लाइफ, मैरिज, करियर, हेल्थ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं? तो एक्यूरेट पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के जरिए पाइए अपने जीवन और आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की गाइडेंस। चाइल्डलेस कपल्स के लिए भी स्पेशल कंसल्टेशन अवेलेबल है। कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ पंडित रामकृष्ण आपकी सिचुएशन को समझकर सही गाइडेंस और सॉल्यूशंस देने का प्रयास करते हैं। अपनी पर्सनल पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस के लिए आज ही कॉल करें पंडित रामकृष्ण 437-882-0639, दैट्स 437-882-0639।
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
5: हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर शालिनी आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करती है ऑन CMRFM 101.3। इट्स थैंक्स गिविंग लॉन्ग वीकेंड और आप सभी को मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड दैट मींस अ लॉट टू अस। आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812। हमारे साथ फारूक आबिद जी हैं, रिनाउन म्यूजिक प्रोड्यूसर, और हम कर रहे हैं बहुत सारा लाइव म्यूजिक आप लोगों की फरमाइश पर। अगला गीत आप तक पहुंचाएंगे।

0: क्या बात है फारूक जी, ऑसम। और यहाँ पर मैं फारूक जी आपका नंबर भी अनाउंस कर दूं, दोस्तों आप फारूक जी से बात कर सकते हैं, कोई भी जिंगल आप बनाना चाहें, रिकॉर्डिंग अपनी करना चाहें, पॉडकास्ट बनाना चाहें, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो है ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन के लिए। और नंबर आप नोट कर लीजिए, फारूक जी का डायरेक्ट नंबर है जिस पर आप बात कर सकते हैं। और डायरेक्ट नंबर फारूक जी, मैं चाहूंगी इस बार आप अपनी आवाज में बता दें।
1: 01656016605, किसी भी गाना बनवाना हो, जिंगल बनाना हो, एड बनाना, पूरा प्रोडक्शन हाउस है,
0: जी
1: आई कैन गिव यू ऑल द फैसिलिटी।
0: ऑसम। 416-560-1605 है नंबर फारूक जी का। मस्ती की रेलगाड़ी पर आप लोगों का शालिनी फिर से वेलकम करती है। और डॉक्टर फरवा को अभी आपने सुना, और अभी अभी हमारे पास मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नंबर मिस कर दिया। मैं फिर से बता दूं डॉक्टर फरवा का नंबर, कोई भी आप मैचेस देख रहे हो अपने बेटी के लिए, बेटे के लिए, या अपने खुद के लिए, तो 647-701-7973 क्या बात है, हाउ स्वीट।

0: अच्छा,
1: गाना
0: बहुत खूबसूरत गाना है। और फरूख जी, ये जो गानों की सिलेक्शन है ना, ये जो हमारे मैसेजेस आए हुए हैं, नए पुराने हमें चैलेंज करते हैं लोग, और बड़ा अच्छा लगता है ऐसे चैलेंजेस को फेस करने में।
1: अब तो हमें तो हम तो वो गाने गाते जो हमारे दिल को अच्छा लगता
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल। कैसा लगा डॉक्टर फरवा? गुड, थैंक यू सो मच।
1: मुझे बड़ा अच्छा लगता
0: ओ नाइस।
1: मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कुमार राठौर
0: रूप
1: जी,
0: कुमार
1: जिन्होंने
0: राठौर। अच्छा
1: उनके साथ एक गाना भी रिकॉर्ड, दो तीन गाने रिकॉर्ड
0: अच्छा आप तो
1: उनके
0: बॉलीवुड में
1: गाने।
0: बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं फारूक जी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, आपके साथ ताल्लुक रखते हैं।
1: मैंने जाके वहां बॉम्बे में, वहां पे एक स्टूडियो है अंधेरी में स्टूडियो, वहां मैंने
0: अच्छा
1: रिकॉर्ड किया रूप कुमार जी के। क्या
0: ओके,
1: प्यारा इंसान है, क्या
0: वाह
1: इंसान। देखिए म्यूजिक और हर चीज मेरे ख्याल से जब आप अच्छे इंसान होते हैं ना, खुद
0: जी,
1: बहुत निकलता है।
0: एब्सोल्युटली
1: जैसे गुलाब को आप देखते हो,
0: जी।
1: गुलाब को आप कांटों में उगता है वो, अगर आप उसको मसलते भी हो ना, तकलीफ भी देते हो उसको,
0: जी जी
1: लेकिन फिर भी खुशबू देता है। अच्छा
0: दैट्स ट्रू,
1: इंसान होना चाहिए,
0: हाउ
1: क्या
0: स्वीट,
1: ख्याल है।
0: बहुत
1: आइए
0: बढ़िया।

0: Awesome. Beautiful. क्या बात है. Beautiful. Awesome, awesome. क्या बात है. क्या बात है, क्या बात है फारूक जी. That was amazing.
1: We have two beautiful audience, Simran and Dr. Farwa.
0: So good, so good to have everyone here today. और बस अब वक्त ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा. वी स्टिल हैव 4 मिनट्स टू गो फारूक जी. तो कौन सा गाना यहाँ पर दोस्तों आपको. जी वीर ज़ारा वाला डेफिनेटली. वीर ज़ारा का अटेम्प्ट डेफिनेटली करेंगे फरवा जी. बट
1: अभी बोला करते हैं कोई पुराना गाना. तुझसे नाराज.
0: तुझसे नाराज नहीं. या जरूर. क्या बात है.

से। आप सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMR FM 101.3। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812 416-569-7812 और ईमेल अस एट info@shawnmedia.com। शॉन एक्सप्रेस, अ शॉन मीडिया प्रेजेंटेशन।

आज मित्र भाइयों, ये है JM 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो बिंद्र भाइयों। नवरात्रि शुरू हो चुकी है, माँ की भक्ति का रंग छाया है, हर दिल में श्रद्धा का दीप जगमगाया है। ढोल की थाप और गरबे की गूंज से सारा वातावरण महकाया है। माँ के चरणों में झुके हर शीश, हर घर में सुख समृद्धि का उजियारा हो। आइए माँ की आराधना में डूब जाएं और मधुर गीत से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जय माता दी, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।

0: 7 से 8 तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: ये है GTA की साउथ एशियन कम्युनिटी की आवाज, जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। डेली 4:05 PM जरा सुनिए तो।
2: हाँ जी मित्रों भाइयों, ये है जीएम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। आइए नजर करते हैं अराउंड द जीटीए। थैंक्सगिविंग पर टोरंटो में कई सेवाएं बंद। आज थैंक्सगिविंग के कारण बैंक, सरकारी दफ्तर, स्कूल और कई बड़े मॉल बंद है। हालांकि सीएन टावर और टोरंटो जू जैसे आकर्षण खुले रहे। आज बैग बंद है लेकिन घर में मेहमानों की खातिरदारी का खर्चा चालू है। थैंक्सगिविंग है भाई, जेब खाली हो जाए मगर दिल भरा रहना चाहिए।

टीटीसी में बदलाव, यात्रियों को परेशानी। आज टीटीसी रविवार के शेड्यूल पर चल रही है। लाइन 2 पर सेंट जॉर्ज और ब्रॉडवे तक सुबह 11 बजे तक सबकी जगह शटल बसें चल रही। टोरंटो में दो चीजों का भरोसा नहीं, मौसम कब बदलेगा और सबकी जगह शटल बस कब चलने लगेगी। जीटीए के रियल एस्टेट बाजार में सुस्ती। सितंबर में जीटीए के घरों की बिक्री पर बढ़ती मॉर्गेज दरों और अमेरिका कनाडा व्यापार तनाव का दबाव दिखाई दिया। घरों की औसत कीमत भी पिछले साल से नीचे रही। पहले लोग कहते थे टोरंटो में घर खरीदना सपना है, अब आखिरकार लोग कहते हैं सपना तो है लेकिन मॉर्गेज का सपना डरावना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ऐसा सुनाई दे रहा है। ऑन्टारियो प्रोविंशियल पुलिस ने लंबे वीकेंड पर तेज रफ्तार, नशे में ड्राइविंग और मोबाइल इस्तेमाल करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ निगरानी बढ़ाई है। दोस्तों, थैंक्स गिविंग पर टर्की खाइए, मिठाई खाइए, लेकिन स्पीड लिमिट मत खाइए, वरना थैंक्स गिविंग का बिल पुलिस चलान में एक्स्ट्रा आएगा। हाँ तो बिंदर भाइयों, खबरों में कहीं राहत है कहीं परेशानी का दौर, मुस्कुराते रहिए, यही है जिंदगी का असली जोर। ये जेम 101.3 विथ जतीन एंड अमिताभ, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यू आर जैमिंग विद जैम 101.3 और मैं हूं अमिताभ। और जैम 101.3 पर आज यादों का एक स्पेशल सेलिब्रेशन, जरा सुनिए तो। कल यानी 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन साहब ने अपना 84वां यानी 84th बर्थडे सेलिब्रेट किया। हमारी बर्थडे विशेस एक दिन लेट जरूर है, लेकिन बिग बी के लिए हम सभी का प्यार बिल्कुल ऑन टाइम एवरी टाइम। फॉर मेनी ऑफ अस, बच्चन साहब हैज बीन पार्ट ऑफ आर ग्रोइंग अप ईयर्स। सिनेमा टिकट खरीदने की वो लंबी कतारें, कैसेट्स पर उनके फेवरेट गाने और घर में उनके डायलॉग्स बोलने की प्रैक्टिस, और फिर चुपके चुपके और अमर अकबर एंथनी में उनकी वो लाजवाब कॉमिक टाइमिंग, आज भी दिख जाए तो हंसी आ ही जाती है। बच्चन साहब ने हमें सिर्फ सीरियस होना नहीं, खुलकर हंसना भी सिखाया। एंड वॉट मेक्स हिज जर्नी रिमार्केबल इज हाउ इट केप्ट चेंजिंग। ब्लैक, पा और पीकू में हमने उनका एक और अंदाज देखा, कभी खामोशी में दर्द, कभी बच्चों वाली मासूमियत, कभी एक जिद्दी फादर की वल्नरेबिलिटी। और कौन बनेगा करोड़पति के जरिए वही सिनेमा का सुपरस्टार हमारे लिविंग रूम में एक फेमिलियर रीअश्योरिंग प्रेजेंस बना हुआ है पिछले तकरीबन 25-26 सालों से। GTA में भी कितनी फैमिलीज हैं जहां ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चे, तीनों जनरेशन का अपना अपना अलग फेवरेट बच्चन मोमेंट है। सो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे बच्चन साहब, अच्छी सेहत, खुशियां और हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार आपके लिए। मैं हूं अमिताभ, यू आर ट्यून्ड इन टू जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ, जरा सुनिए तो।

0: ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਮਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਵਲ ਦਾਲਾਂ ਆਟਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਸਾਲੇ ਟੀ ਸਨੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਵੈਰਾਇਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਨਾਜ ਮਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਐਂਡ ਮੇਫੀਲ ਰੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਐਟ 6141 ਮੇਫੀਲ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ 42 ਏਬਰਾਮਟਨ ਕਾਲ 9059288557 अनाज मार्ट।
1: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक। बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार वार्ड 9 और 10, ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
2: घर खरीदना हो, बेचना हो या इन्वेस्टमेंट का हो प्लान, कंफ्यूजन छोड़िए और जाने माने रियल्टी एक्सपर्ट से डायरेक्टली पूछिए अपना कोई भी सवाल। सुनिए रियल एस्टेट पर चर्चा विद पीके सभरवाल एवरी वेंसडे शाम 4:25 पर, सिर्फ जैम 101.3 पर। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल विद पीके सभरवाल।
3: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare Mumbai MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
4: डांडिया या गरभा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
5: GTA ट्रैफिक में लोग अटके हुए हैं, लेकिन उनका अटेंशन तो बिल्कुल फ्री है। टर्न ड्राइव टाइम इनटू योर बिजनेस टाइम। एडवर्टाइज ऑन जैम 101.3 वीकडेज।

0: जैम 101।
1: हाँ जी मित्र भाइयों, ये है जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। हम हैं आपके दोस्त जतिन। आज थैंक्स गिविंग के मौके पर जहाँ पूरा कनाडा एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहा है, वहीं टोरंटो के इटोबिको से एक बेहद हैरान करने वाली खबर आई है। सेकंड हार्वेस्ट, जो जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त भोजन पहुंचाने वाली एक चैरिटी संस्था है, उसके 7 ट्रकों में तोड़फोड़ कर उनके कीमती डीजल पार्ट्स चोरी कर लिए गए। चोर सुरक्षा की बाड़ काटकर अंदर घुसे और इस घटना से संस्था के लगभग आधे डिलीवरी ट्रक बंद हो गए। मरम्मत, किराए के वाहनों और दूसरी व्यवस्थाओं पर करीब 1,00,000 कैनेडियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है। और दोस्तों, जरा विडंबना देखिए, जिस थैंक्सगिविंग पर लोग दूसरों की थाली भरने का संकल्प लेते हैं, उसी दिन कुछ लोगों ने गरीबों की थाली तक खाना पहुंचाने वाले ट्रकों को ही निशाना बना दिया। जो भूखों तक रोटी पहुंचाते हैं वो इंसानियत का मान है। जो भूखों तक रोटी पहुंचाते हैं वो इंसानियत का मान है। उनके रास्ते में कांटे बिछाने वाले सोचो कितने नादान है। थैंक्स गिविंग का असली संदेश शुक्रिया अदा करना ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। उम्मीद करते हैं दोषियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और सेकंड हार्वेस्ट की सेवाएं जल्द सामान्य होगी। ये है जीएम 101.3। हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Cricket ki aaj ki updates. Only on Jam 101.3. Zara suniye to.
2: स्वागत है एक बार फिर आप सभी का. आप सुन रहे हैं जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ, और मैं हूं अमिताभ. और आज थैंक्सगिविंग वीकेंड पे आइए रुक करते हैं क्रिकेट की कुछ खबरों का. जरा सुनिए तो, टीम इंडिया बैक इन फ्रंट. कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में इंडिया ने 223 ऑल आउट रन बनाए. वेस्ट इंडीज को 209 फॉर 7 पर रोककर 14 रन से आसान सी जीत हासिल की और सीरीज में 2-1 की बढ़त. 3 विकेट हॉल के लिए अर्शदीप सिंह बने प्लेयर ऑफ द मैच. अभिषेक शर्मा रन्स भी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी. 30 बॉल्स में 69 रन्स की एक्सप्लोसिव इनिंग्स के साथ अभिषेक मेंस T20 इंटरनेशनल्स में बॉल्स फेस्ड के हिसाब से फास्टेस्ट 2000 रन्स तक पहुंचे सिर्फ 1024 डिलीवरीज में. सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड पीछे. पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम कर ली. रावलपिंडी में पाकिस्तान के 215 फॉर 3 के जवाब में श्रीलंका 133 फॉर 7, 82 रन्स की जीत और 2-0 की अनबीटेबल लीड रही पाकिस्तान के नाम. प्लेयर ऑफ द मैच मास सदाकत ने 59 बॉल्स पर 96 रन्स बनाए. इंडिया की बॉलिंग कमबैक पर कप्तान की शबाशी. श्रेयस अय्यर ने इंदौर विक्ट्री के बाद बॉलर्स की क्लियर प्लानिंग और प्रेशर में एग्जीक्यूशन को क्रेडिट दिया. अर्शदीप के 3 और दमनधीर के 2 विकेट्स ने कैरेबियन चेज पर लगाया ब्रेक. वुमेन्स क्रिकेट में बांग्लादेश का हिस्टोरिक 100. ब्रिस्बेन में शोभाना मुस्तरी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 118 रन बनाए. ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर ओडीआई सेंचुरी लगाने वाली पहली बांग्लादेशी वुमेन बनी. कप्तान निगर सुल्ताना के साथ 195 रन्स की पार्टनरशिप भी बनी. तो ये थी क्रिकेट की आज की कुछ अपडेट्स. मैं हूं अमिताभ एंड यू आर ट्यून्ड इन टू जैम 101.3. जरा सुनिए तो.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: ट्रैफिक स्लो हो सकता है लेकिन मौज मस्ती नहीं। जैम 101.3 ऑन CMR विद जतिन एंड अमिताभ डेली 4-5 PM। जरा सुनिए तो।
2: हाँ जी मेरे भाइयों, आज थैंक्सगिविंग डे यानी शुक्रिया अदा करने का दिन। वैसे बेंद्र भाइयों, हमारे यहाँ थैंक यू बोलने की परंपरा थोड़ी सी अलग है। किसी को थैंक यू बोल दो तो सामने वाला कहेगा, अरे भाई इसमें थैंक यू की क्या बात है। और थैंक यू ना बोलो तो कहेगा, इतना भी नहीं कि एक बार थैंक यू कह दे। दोस्तों, थैंक्सगिविंग की परंपरा फसल और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने से जुड़ी है, लेकिन आज के ये त्योहार में हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। जिंदगी में जो नहीं मिला उसकी शिकायत करने से बेहतर है जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करना। जरा सोचिए, हम रोज भगवान के सामने कितनी लंबी लिस्ट लेकर खड़े रहते हैं। प्रभु अच्छी नौकरी दे दो, बड़ा घर दे दो, बैंक बैलेंस बढ़ा दो, अच्छी सेहत दे दो। भगवान भी सोचते होंगे, भाई कभी कुछ लेने नहीं, सिर्फ थैंक यू बोलने भी आया करो। और बहनर भाइयों, आज अपनी माता जी को धन्यवाद जरूर कहिएगा, पिताजी को धन्यवाद जरूर कहिएगा, अपने जीवन साथी और बच्चों को भी धन्यवाद कहिएगा। खासकर अपनी पत्नी को तो धन्यवाद जरूर कहिएगा, अगर घर पत्नी है आप तो अपने पति को धन्यवाद कहिएगा, क्योंकि दुनिया में वही एक इंसान है जिसे हमारी 20 साल पुरानी गलती भी तारीख और समय के साथ याद रहती है। जो के पार्ट जीवन साथी एक दूसरे के साथ ही होते हैं, धन्यवाद कहने की जरूरत भी नहीं। दिन की हर कोशिशें धन्यवाद ही होती है, फिर भी कहना कभी कभी अच्छा लगता है। बेंद्र भाइयों, जो मिला है उसे किस्मत का खूबसूरत इतिहास समझिए, जो मिला है उसे किस्मत का खूबसूरत इतिहास या फिर उपहार समझिए, जो साथ खड़े हैं उन्हें ही जीवन का सच्चा संसार समझिए। और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे श्रोताजनों का, हमारे स्पॉन्सरर्स का, जेम 101.3 की ओर से आप सबको थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमें दिल से साथ देने के लिए। ये है अमिताभ और जतीन, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: अगर फ्यूचर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में है आपका इंटरेस्ट लेकिन आपको पता नहीं शुरुआत कैसे करें या इसमें सक्सेसफुल कैसे हो, तो कॉल कीजिए कुमार 9059294881। कुमार आपको अपनी कई सालों की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आपको गाइड करेंगे एक्सपर्टली यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी आप इजीली 100 से $300 बना पाएंगे हर दिन। बस चाहिए एक फास्ट कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, टाइम, डेडिकेशन और कुमार के एक्सपर्ट गाइडेंस टू बिकम एन एक्सपर्ट ट्रेडर। कॉल 9059294881 और विजिट kumartradessolutions.com।
1: इट्स बॉलीवुड टाइम, लेट्स गो।
2: स्वागत है एक बार फिर आप सभी का, मैं हूं अमिताभ और जैम 101.3 पर आज याद कर रहे हैं एक ऐसे शायर को जिनके अल्फाज सीधे दिल तक पहुंचते हैं। जरा सुनिए तो, आज यानी 12 अक्टूबर निदा फाजली साहब की 88th बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म 1938 में दिल्ली में हुआ और बचपन ग्वालियर में गुजरा। उनकी शायरी की खूबसूरती थी उसकी सादगी, रोज़मर्रा की जिंदगी, घर, रिश्ते, तन्हाई और मोहब्बत। वो फेमिलियर फीलिंग्स को ऐसे अल्फाज देते थे कि सुनने वाला कहता था, हाँ ये तो मेरे दिल की बात कही है इन्होंने। For those of us living far from where we grew up, that connection feels specially personal. कभी एक गीत पुराना घर याद दिला देता है, कभी कोई रिश्ता और कभी अपना ही एक भूला हुआ कोई हिस्सा। हिंदी सिनेमा में भी निदा साहब ने हमें यादगार गीत दिए हैं, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है और कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता जैसे गाने। उनके अल्फाजों में टेंडरनेस थी और जिंदगी को समझने की एक गहराई। द वर्ड्स फेल्ट पर्सनल इवन व्हेन मिलियंस वर लिसनिंग। आज उनकी याद को सलाम करते हुए सुनते हैं 1999 की फिल्म सरफरोश की वो खूबसूरत सी गजल, निदा फाजली के अल्फाज, जतिन ललित का संगीत और जगजीत सिंह की मखमली आवाज। जैम 101.3 पर पेश है होश वालों को खबर क्या।

0: ताजी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, हर तरह की ग्रोसरी आइटम्स और इंडिया से आया आपका मनपसंद सामान मिलेगा अब बेस्ट प्राइसेस पे, क्योंकि आपके अपने शहर में आ गया है अनाज मार्ट। डेली ग्रोसरी हो, चावल, दालें, आटा, देसी घी, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन का बाकी जरूरी सामान, सब कुछ अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी और बढ़िया प्राइसेस पर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आज ही विजिट करें अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड और मेफील्ड रोड का कॉर्नर, 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42A, ब्रैम्पटन, 9059288557। अनाज मार्ट।
1: मॉर्गेज रेट्स, रिन्यूअल्स, रीफाइनेंसिंग या अपने पहले घर का सपना, अप्रूवल कैसे मिले, पेनल्टीज से कैसे बचें और सही मॉर्गेज कैसे सेलेक्ट करें, हर सवाल का मिलेगा सीधा एंड प्रैक्टिकल जवाब। ट्यून इन टू मॉर्गेज मास्टर क्लास विद अयाज हर थर्सडे शाम ठीक 4:30 PM लाइव ऑन जैम 101.3।
2: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक। बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10। ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
4: GTA ट्रैफिक में लोग अटके हुए हैं, लेकिन उनका अटेंशन तो बिल्कुल फ्री है। टर्न ड्राइव टाइम इनटू योर बिजनेस टाइम। एडवर्टाइज ऑन जैम 101.3 वीकडेज 4 to 5.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

हाँ जी मेरे भाइयों, ये है जीएम 101.3 विद जतीन एंड अमिताभ। हम हैं आपके दोस्त जतीन। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। चारों ओर माँ अम्बे की आराधना, रंग बिरंगी कपड़े, ढोल की थाप और गरबे की धूम। गरबा गुजरात की मिट्टी से निकला, लेकिन बॉलीवुड ने उसे देश दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। आइए याद करते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे सुपरहिट गरबा गीत, जिन्हें सुनते ही पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। ढोली तारो ढोल बाजे, फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम, सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ये गीत आज भी गरबा प्रेमियों के दिलों पर राज करता है। गरबे में कुछ लोग इतने जोर से घूमते हैं कि लगता है जैसे गरबा नहीं वॉशिंग मशीन का स्पिन मोड चालू हो गया हो, लेकिन इसमें भी मस्ती से आराधना करते हैं। एक और गीत याद आता है, नगाड़ा संग ढोल बाजे, गोलियों की रासलीला रामलीला, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पर फिल्माया गया ये गरबा गीत लोगों की जान बन गया था। इस गीत में ढोल इतना जोर से बजता है कि दिल की धड़कने भी कहती है कि दिल का धड़कन इससे ही ताल मिला दे। लव यात्री का छोगाड़ा तारा, दर्शन रावल की आवाज में ये गीत युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। गरबे में कई नौजवान माँ अम्बे के दर्शन करने आते हैं और दर्शन कर पावनता महसूस करते हैं। शुभारंभ काईपोचे, ये फिल्म का नगमा। इस गीत में गुजरात की संस्कृति, उत्सव और गरबे की खूबसूरती दिखाई देती है। और एक गीत याद आता है, उड़ी उड़ी जाए, रईस फिल्म का ये नगमा। शाहरुख खान और माहिरा खान पर फिल्माया गया ये खूबसूरत गीत गुजराती गरबे का रंग लेकर आया। तो बंदर भाइयों, ढोल की हर थाप में माँ अम्बे का नाम हो, ढोल की हर थाप में माँ अम्बे का नाम हो, गरबे की हर घूमती चाल में भक्ति का पैगाम हो। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मां अम्बे से प्रार्थना की हर किसी के जीवन में सुख शांति और खुशियां उजाला बना रहे। यह जीएम 101.3 विद जतीन एंड अमिताभ। हम हैं आपके दोस्त जतीन।

तो बस दोस्तों, मंडे का सफर यहीं तक। उम्मीद है आपकी वीक की शुरुआत हमारे साथ थोड़ी और मुस्कुराहट के साथ हुई होगी। कल फिर मिलेंगे नए गीत, नई बातें और नई एनर्जी के साथ। मैं हूं अमिताभ, आप जुड़े हुए हैं जैम 101.3 के साथ। और जाते जाते भी हमारा यही कहना है, जैम 101.3 जरा सुनिए तो।

And here we meet again on this long weekend का छुट्टी वाला मंडे. वैसे अपनी तो कहे की छुट्टी खींच ही लाता है ये रेडियो पर ये फिल्मी नुक्कड़ यू एंड हमारा आपका दो घंटे का साथ का लालच है ना. बाकी आज थैंक्सगिविंग वाला दिन है तो उसकी वजह कुछ भी हो थैंक्स लेना देना तो बनता ही है. याद ये जरूर दिला देता है कि हैशटैग ग्रेटिट्यूड में अपनी लाइफ गुजारे. सो ऑन दिस शुक्रगुजार वाली नोट दिस इज स्वाती एंड तन्वी ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि थैंक यू पहले उसको कहें जो ये लॉन्ग वीकेंड वाला मंडे लेके आया है जो कि एक्स्ट्रा इजी डे दे गया है इन दिस काम काजी वाला हफ्ता. देन मौसम को कहें जो कुछ रंग ढंग बदला जरूर है पर फिर भी काम चला गया है. देन हमारे अपनों को जो दूर हो या पास पर रहते हैं हमारे दिल में आते भी हैं काम ना भी आते हो काम तो भी कह डालो. एंड देन डोंट फॉरगेट टू से थैंक्स टू जिंदगी. डियर जिंदगी शुक्रिया जिंदगी.

ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाएं, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: क्या आप बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मॉर्गेज सॉल्यूशंस, बीट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉर्गेज। बैंक्स हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन। प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर। बेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे। अभी कॉल करें 6472220 94, 6472220 94।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: सिटी हॉल विच ब्रेड ब्रेडफोर्ड ने तुहाडा टीटीसी किराया वधाया अते वार वार सर्विस विच कटौती कीती। उदों भी जदों उन्हां ने कहा सी कि ओ अजेहा नहीं करनगे, वो अपने वादियां तो मुकर गए। बिल्कुल उसे तरह जिवें उन्हां ने सस्ते करां, किराया कंट्रोल, पुलिसिंग अते बाइक लेना दे मामले विच कीता। ब्रेडफोर्ड कहंदे कुछ होर हन अते करदे कुछ होर, क्योंकि चोणां जित्तण लई ओ कुछ भी कह सकते हन। ओ इदां दे ही हन कि तुसीं सचमुच उन्हां ते भरोसा कर सकदे हो। अपने घर दे किराए लई, अपने टीटीसी किराए लई, अपनी सुरक्षा लई 26 अक्टूबर नूं फैसला तुहाडा है। Authorized by the Olivia Chow Campaign.

0: सात से आठ तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: Let's turn it up.
2: Let's kick it up.

नीड अगेन ऑन द डे, जो याद दिलाता है हम सभी को कि विचारों को ना दिमाग में ना कैद करें, थोड़ी सी हवा दें भाई, थोड़ा जिज्ञासा का न्यूट्रिशन दें उसे, थोड़ा आदान प्रदान का, दैट कंजीनियल थॉट्स एक्सचेंज का रूम दें उसे, और हाँ देन एक एम की तरफ एक दिशा भी दे दें उसे। वो कहते हैं ना, किसी भी इन्वेंशन की शुरुआत इज ऑलवेज ऑलवेज विद अ फ्री थॉट। जब सोच को हमने दायरों में बांधा नहीं होता, दरवाजों के पीछे छुपाया नहीं होता, पंख दिखे ना दिखे उनके, उड़ान की ऊंचाइयों से उनका समझौता नहीं होता, तब जो होता है ना वो होता है जो किसी ने भी सोचा नहीं होता। So on this National Free Thought Day today, this is Swati and Sukh on Filmy Nukar CMR 101.3 FM पर saying कि DDLJ के बाबूजी की तरह जा सिमरन जा, जीले अपनी जिंदगी की जगह, अपने ख्यालों के बाबूजी बनकर उनको ये आजादी जरूर दे, एक मौका कि सोचो सोचो, सोच में ना करो कंजूसी, क्योंकि सोच है भाई तो 100 आसमान पार की सैर भी है परिंदों की तरह।

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: अब फायदा उठाएं अक्टूबर के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना। 5 इयर्स वेरिएबल 3.45%, व्हिच इज प्राइम माइनस 1, 3 इयर्स फिक्स 4.29%, 5 इयर्स फिक्स 4.39%। साथ ही हॉट हॉट कैशबैक भी अप टू $5,600 और एक गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा अप टू $1,500। कॉल अमित खुराना नाउ एट 647-341-2785, 647-341-2785 और विजिट amitkurana.ca।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Follow us on Instagram. It's rjswati_toronto.

प्यारा सा गाना दैट वाज फ्रॉम दिल चाहता है, अलका याग्निक की आवाज, साथ में उदित जी की आवाज, और बहुत सारी यादें जो इस फिल्म के साथ जुड़ी होती हैं हम सब ने जिन्होंने देखी है। बाकी ये जो म्यूजिक है ये इतना प्यारा है कि आज भी ये एवरग्रीन म्यूजिक की तरह हम इसे मानते हैं और अभी बजाते हैं गाते हैं। लेकिन अगर आप देखें शंकर एहसान लॉय का जो म्यूजिक है वो ओवर द ईयर्स अभी भी ऐसा लगता है एकदम फ्रेश हो। और इसमें अगर आप ये भी देखें शंकर एहसान लॉय, ये दीज आर थ्री पीपल, बहुत लोगों को पता है पर बहुत लोगों को नहीं पता, उनको बता दूं तो इसमें जो एहसान जी हैं उनका आज बर्थडे भी है। और मैं देख रही थी उनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मुझे इन्फॉर्मेशन एक मिली कि जो एहसान जी हैं इनका गिटार में एक बहुत ज़्यादा हाथ अच्छा है, इन्होंने गिटार बहुत लंबे समय तक सीखा है और इतने अच्छे से सीखा है कि सिर्फ मुंबई में या अच्छे स्कूल्स या अच्छे गुरुओं के साथ नहीं, हॉलीवुड कैलिफोर्निया में जाके भी इन्होंने बहुत टाइम तक गिटार सीखा है। इनफैक्ट इनका गिटार में जो स्किल है वो इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कि ही हैज़ बीन एंडोर्स बाय फेंडर गिटार्स, फर्स्ट गिटारिस्ट है इंडिया से जिनका उन्होंने एंडोर्स किया है। साथ में जो स्क्यूअर कंपनी है जो कि स्ट्रिंग्स बनाती है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स के, उनके में भी एक सिग्नेचर मॉडल है उनका जो कि इनके नाम से है, एहसान के नाम से। तो बहुत ही उम्दा म्यूजिशियन है, तो हमें सभी को पता है जो इन म्यूजिक साथ में शंकर एहसान लॉय के ऐसे ही नहीं जुड़ा हुआ एक पूरी टीम है, बट इनिशियली ही वॉज जस्ट अ गिटारिस्ट एंड देन बहुत सारे लोगों के साथ धीरे धीरे बजाया और उसके बाद फाइनली ही बिकेम ए कंपोजर हिमसेल्फ विद दिस टीम जो कब से शुरू हुई और अब तक चल रही है, कहते ना एक बॉन्ड जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। बहुत सारे अवार्ड्स इनके हिस्से में आए हैं एज अ टीम शंकर एहसान लॉय के हिस्से में। एक गाना आपने अभी सुना कल हो ना हो, वन ऑफ द फिल्म्स बंटी और बबली इज वन ऑफ द फिल्म्स, भाग मिल्खा भाग इज वन ऑफ द फिल्म्स, टू स्टेट्स एक फिल्म है एंड द लिस्ट इज रियली लॉन्ग। एक और फिल्म आई थी इसमें पूरा क्लासिकल म्यूजिक था, वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी, इसके गाने मैं अक्सर बजाती भी हूँ। पर नेक्स्ट गाना लाइंड अप नेक्स्ट बाय दिस म्यूजिक कंपोजर जिसमें शंकर जी और लॉय जी का भी म्यूजिक है, इज फॉर यू गाइज, एंजॉय दिस वन।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कर। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkar.com।
1: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
2: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
3: घर कहीं भी लेना हो

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: गेट ऑन योर फीट विद पेपी नुक्कड़ बीट्स।

यादों की अलमारी हम सभी की होती है एक्चुअली, है ना, एक तरह की वो सेविंग्स की तरह, वो दिल के बहुत करीब वाली, किसी की गुल्ला, किसी की संदूकची, किसी का पिटारा, किसी की डायरी, किसी की किताब, किसी की डिब्बी और किसी का छोटा सा पर्स, तो किसी की पूरी अलमारी। पर यादों की सेविंग्स ना हम सभी करते हैं, नफे नुकसान से परे उन्हें संजो के रखते हैं, है ना। सो ऑन दिस नेशनल सेविंग्स डे टुडे, व्हिच इज मेनली फॉर पैसा पैसा एंड पैसा, कि आज थोड़ा थोड़ा बचाओ और उसे बचा के अपना कल बचाओ, आई वुड ऑल्सो से कि पैसे के साथ साथ रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके उन रिश्तों को भी बचाओ जिनके लिए ये पैसा बचा रहे हो। एंड यस यस, जितनी चादर उतने पैर पसाओ, आमदनी अगर है आपकी अठन्नी तो भाई खर्चा रुपया मत बढ़ाओ, ये सब भी ठीक है, पर व्हेन इट कम्स टू सेविंग्स एक बात याद रखो कि पहले खुद की और फिर अपनों की खुशियां और उनके साथ पर प्रायोरिटी पे गौर फरमाओ। क्या कहते हैं?

क्या आप बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मॉर्गेज सॉल्यूशंस, बीट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉर्गेज. बैंक्स हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन. प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर. बेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे. अभी कॉल करें 6472222094, 6472222094.

जानते हैं पहली ह्यूमन रिकॉर्डिंग किस चीज की हुई थी? एक धुन की, अप्रैल 9th को इन 1860, एंड इट वाज डन बाय एडवर्ड लियोन्स कॉन्टे मार्टिनविल। और वो दिन आज की डेट में इंटरनेशनल सॉन्ग राइटर्स डे करके ऑब्जर्व भी किया जाता है, रिमाइंडिंग एवरीवन कि भाई सपोर्ट करो अपने फेवरेट सॉन्ग राइटर्स को एज मच एज यू लव देम। उनकी एल्बम्स खरीदो, फ्री में डाउनलोड मत करो, उनके कॉन्सर्ट्स पर जाओ, फ्री के टिकट्स के चक्कर में मत रहो, एंड शेयर योर लव। देखो ना, अभी सॉन्ग राइटर्स अच्छे वाले नहीं होते तो गानों का मजा भी अधूरा ही रह जाता है ना। हम गुनगुना तो पाते उन्हें पर गा नहीं पाते, राइट? एंड इफ यू आर वंडरिंग कि वो धुन कौन सी थी जो पहली पहली रिकॉर्ड हुई थी, तो बता देती हूँ कि वो धुन ना एक फ्रेंच लोकगीत की थी। सुनी होगी आपने, धुन जरूर सुनी होगी, ओ क्लेर दे ला लूना मन मी पेरो। ये अगर जो फ्रेंच नहीं भी सुनी तो वो जरूर सुना होगा हिंदी वाला, ओ लड़के दीवाने कहाँ से आया तू, दुल्हन को ले जाने कहाँ से आया तू। सलमान खान की फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है, वहीं से इंस्पायर्ड है ये गीत। बस हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सुनवा ही देती हूँ। चले चलते हैं।

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453-5353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.

0: नवंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: म्यूजिक चार्ट्स पर ये है ऑन टॉप, प्राइवेट स्टूडियो से लुक कर इंडी पॉप।

और खाने से दूरी सही नहीं जाती है। तो आज हैशटैग नेशनल फार्मर्स डे पे आप याद रखें कि भाई जिनकी मेहनत से खाना आपकी टेबल तक पहुंचता है, वो जो एकड़ में काम करते हैं, घंटों में नहीं, फार्मर्स, उनको धन्यवाद करना ना भूले। जय जवान, जय किसान।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

0: 7 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: अब फायदा उठाएं अक्टूबर के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना। 5 इयर्स वेरिएबल 3.45%, व्हिच इज प्राइम माइनस 1, 3 इयर्स फिक्स 4.29%, 5 इयर्स फिक्स 4.39%। साथ ही हॉट हॉट कैशबैक भी अप टू $5,600 और एक गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा अप टू $1,500। कॉल अमित खुराना नाउ एट 647-341-2785, 647-341-2785 और विजिट amitkhurana.ca।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
1: फॉलो अस ऑन फेसबुक, फिल्मी नुक्कड़, इट्स द फ्री टाइम।

प्यार, कभी अफीमी सा, कभी काफिराना सा, कभी वो मेरा अपना सा, कभी उसका बेगाना सा, कभी डूबा डूबा सा, कभी शायराना सा, कभी समझा संभला सा, कभी पागल दीवाना सा, कभी इबादत सा प्यारा प्यारा, और कभी इश्क कमीना सा एकदम नकारा। पर जब होता है ना तो सर चढ़ के बोलता है बॉस, ये एक नशा सा, मिस्टीरियस जादू भरा, और ये रास जिसको ये बुखार चढ़ा बस उसी ने जाना।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: घर कहीं भी लेना

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: नटवर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
4: मगर क्यों? पिताजी नहीं माने क्या?
3: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो, ना वो गाने बजाते हैं ना तुम अच्छा गाते हो।
4: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
1: हाँ, सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR at 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड है और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मॉर्गेज सॉल्यूशंस, बीट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉर्गेज. बैंक्स हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन. प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर. बेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे. अभी कॉल करें 6472222094, 6472222094.

तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, बस जहां उम्मीद हो इसकी वहीं नहीं मिलता, क्योंकि कभी भी किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता। इस खूबसूरत शायरी के खूबसूरत शायर एंड रियलिस्टिक शायरी भी है, मतलब सारे के सारे लोग इससे रिलेट कर जाते हैं, चाहे उन्हें शायरी में इंटरेस्ट ना भी हो तो भी रिलेट कर जाते हैं। तो इस खूबसूरत शायरी के जो शायर हैं निदा फाजली, उनकी आज है बर्थ एनिवर्सरी, और पूरे ट्विटर पर अगर आप जाएं तो इनके शेर लोगों ने ऐसे ट्वीट कर रखे हैं, अपने पसंदीदा शेरों की पूरी पूरी लिस्ट ट्वीट कर रखी है कि पढ़ पढ़ के आज पूरा दिन बड़ा शायराना गुजरा है हम सबका। एक और शेर में इनका पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सोचा था आपसे जरूर शेयर करूंगी। घास पर खेलता है एक बच्चा, घास पर खेलता है एक बच्चा, पास माँ बैठी मुस्कुराती है, मुझको हैरत है जाने क्यों दुनिया काबा और सोमनाथ जाती है। वेल, इतनी सुंदर शायरी लिखते थे, और इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काफी संगीत दिया है। जगजीत सिंह ने बहुत सारे गाने या गजलें जो गाई हैं वो काफी ज्यादा इनकी लिखी हुई भी गाई हैं, और राजीव बमन ने भी इनका लिखा हुआ एक बहुत प्यारा सा गीत मैं आपको सुनवाती हूँ। लता मंगेशकर की आवाज है और लिखा हुआ निदा फाजली का ही है।

0: 3FM
1: न्यूज के लिए मैदान दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो। पेशे खिदमत है सबसे पहले हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज स्कूल कल से खोलने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बाद पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी का इजलास तलब। 13 साल का गंद 3 माह में साफ करेंगे। अब पॉलिसी जलालाबाद से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से आएगी। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल 11 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी कायम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी के खिलाफ JUI ने सेनेट में करारदाद जमा करवा दी। इस्लामाबाद पुलिस की 10 बख्तरबंद गाड़ियां KP पुलिस के हवाले। क्वेटा में पाक फौज का तरबियती तैयारा गिर कर तबाह, 2 पायलट शहीद। रूस के वजीर दाखिला 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। ये थी अब तक की खास खास खबरें। खबरों की तफसील होगी ठीक 8 बजे। सुनते रहिए रेडियो पाकिस्तान टोरंटो।
3: खास खास खबरें मिलाल तमाम साहब के लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज में रबते के नंबर 4165930003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट 192.90 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर लीजिए, वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए। गोंदल ब्रदर्स.com पर आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट 192.90 रुपये। कॉल कर लीजिए 905

0: 7659300003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM 24 घंटे हमारे निशांत रेडियो पाकिस्तान .fm पे सुन सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, उसे भी लाइक कीजिए। ट्यून इन पे हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है। फोन के जरिए सुनना चाहें 6475060003 पे कॉल करके हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारा टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 टीवी, तमाम IPTV बॉक्सेस, जादू बोल जूम बस के साथ साथ एप्पल टीवी, अमेजन फायर टीवी, रोकू टीवी के साथ साथ ट्यूबर ऐप के थ्रू रॉजर्स पे भी आप हमारे निशान देख सकते हैं। हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 टीवी। एंड्रॉयड आईफोन दोनों के लिए हमारे पास फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दो चैनल टोरंटो 360 टीवी और टोरंटो 360 इंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन निशान भी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं। आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए। रियल स्टेट के बारे से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए। कॉल तला भट्टी 6472957861 6472957861। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो।
2: खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009 9058280009। योर लॉग इन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स।
3: इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ कार एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल, यू कैन स्पीक टू अ लॉयर डायरेक्टली। कॉल मोहम्मद आलम, बैरिस्टर एट लॉ एंड पर्सनल इंजरी लॉयर एट आलम लॉ ऑफिस। नो फी अनलेस ही विंस योर केस। फॉर फ्री एडवाइस कॉल 416-625-2636। दैट्स 416-625-2636।

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921 पेप एवेन्यू।

0: Nu är det Pakistan Toronto CMR 101.3 FM. Studios mera apte ke number 416-593-0003. Aini taqaze pure karne ke liye jo governor raj aur emergency lagayi gayi hai, waise to ain mein iski jo hai wo provision maujood hai. Senate aur qaumi assembly ke ijlas jo hain wo talab kar liye gaye hain kal, aur alag alag ijlas sham 6:30 baje honge. Notification ke mutabik sadr mamlikat ne wazir azam ke advice par ijlas talab kiye hain. Dono ijlas parliament house mein honge. Noon League Panimani party ka ijlas bhi hoga, people's party ke agle parliament ka ijlas bhi مانے سے طلب کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری نے ایک بیان میں کہا کہ خیر پختونخوا میں ایمرجنسی پر حتمی فیصلہ آج پارلیمنٹ میں آئینی ترقی کار کے تحت کیا جائے گا. تو ظاہر ہے ان کے پاس اتنی میجورٹی تو ہے کہ ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ وہاں پہ لیگلائز بھی کر لیا جائے گا, اور اس کے آگے کے معاملات جو ہیں وہ خاصے اب جو صوبوں والا معاملہ تو نہیں, لیکن جو یونٹس انتظامی یونٹس والے ہیں اس پہ آغاز ہو چکا ہے. سیکرٹیریٹ جو ہے وہاں پہ آلموسٹ بنا دیا گیا ہے, اور لگتا ایسا ہی ہے کہ اس پہ جو کچھ کہا تھا محسن نقوی صاحب نے اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 FM. نائلہ سعید مساکا وارڈ 7 سے کونسلر کے امیدوار ہیں, ویری کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ ہیں. اف یو آر لیونگ ان وارڈ 7 ان مساکا, ڈو ووٹ نائلہ سعید صاحبہ کو, ووٹ دیجیے آپ. اور ایڈوانس پولنگ شاید آلموسٹ شاید اس حلقے میں تو شاید بھی ہے, لیکن 26 تاریخ کو ووٹنگ کرنی ہے. برمپٹن میں وارڈ 7 اینڈ 8 سے رپو دمن ڈھلو کونسلر کے امیدوار ہیں, اگر آپ اس وارڈ میں رہتے ہیں تو ضرور ان کو بھی سپورٹ کیجیے. شنگھار بینکٹ ہال پہ پاکستانی سٹائل گاجر کا حلوہ سردیاں آ گئی ہیں, دیسی گھی اور تازے کھوئے سے تیار کرتے ہیں. 11 پاؤنڈ کا جو ٹرے ہے $100 میں آپ کو ملے گی, 5.5 پاؤنڈ کی $55 میں, لیکن 10% ڈسکاؤنٹ ریڈیو پاکستان کا حوالہ دینے پر. 50 کینیڈی روڈ ساؤتھ یونٹ 10 برمپٹن میں شنگھار بینکٹ ہال. عابد علی صاحب سے آپ مور انفارمیشن کال کر سکتے ہیں 416-721-5000. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 FM. کمرشل بریک لیں گے اور اس کے بعد آپ کو ملاقات کروائیں گے ہم شیراز حسین صاحب سے مارٹگیج کے حوالے سے. اسٹے ٹیون.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورنٹو, آواز کا سفر دل سے دل تک. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی, مہندی, ریسپشن, برتھ ڈے پارٹیز, کارپوریٹ ایونٹس, غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ, آڈیو ویژول سسٹم, 10 پروجیکٹر اسکرینز, مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ میں سساگا. Information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center, 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, Barrister at Law and Personal Injury Lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636. 625-2636.
3: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
4: Assalamu alaikum. My name is Alvin Tejo and I'm running for mayor of Mississauga. I believe our residents deserve better than more of the same. I'll stop endless tax increases and freeze your property taxes. I'll stop crime and restore safety in our communities. And I'm proud to have the endorsement of Mississauga Muslim Vote. As mayor, I will help religious communities enjoy more opportunities to gather and celebrate. As a child of Indonesian immigrants, I know just how important that is. Vote on October 26th.
5: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low or commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts. 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
1: शिंगार बैंक्वेट हॉल 50 कैनेडी रोड साउथ यूनिट 10 ब्रम्पटन। मेलनी से अब नई लोकेशन पर मूव हुए हैं। 20 साल से इसी बिजनेस में हैं। 50 से 400 तक अफराद के लिए दो खूबसूरत हॉल। शादी, मेहंदी, मंगनी, बर्थडे, अकीका या किसी भी कॉर्पोरेट इवेंट के लिए तशरीफ लाइए। लजीज खाने, वेज और नॉन वेज। इसके अलावा केटरिंग के बहुत ही स्पेशल पैकेजेस हैं। केटरिंग स्टार्ट हो रही है 1099 से। कॉल अबिद अली 416-721-5000। इसके अलावा पाकिस्तानी स्टाइल गाजर का हलवा 5 किलो की ट्रे, देसी घी और ताजा खोए के साथ सिर्फ $100 में। रेडियो पाकिस्तान का हवाला देने पर तमाम सर्विसेज पे 10% डिस्काउंट। शिंगार बैंक्वेट हॉल।
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
8: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, जहां केरला वैद्या रत्ना पीवी राज, जो कि खानदानी वैद हैं, नबज देखकर जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। बेशुमार मरीज उनके हर्बल दवाओं से शफायाब हो चुके हैं। अस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सोरासिस और सारी बीमारियों का इलाज करके उनका जड़ से खात्मा करते हैं। ब्रैम्पटन और स्कारब्रो दो लोकेशन से आपको सर्व कर रहे हैं। कॉल कीजिए 6473278111 It's 6473278111
9: अपना हम सफर Global Travel and Tours
10: Global Travel and Tours Mississauga में community को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। IATA approved agent तमाम major airlines से डील करते हैं। PIA के consolidator हैं और PIA tickets के special low fare available हैं। Book in advance and get special discount. उम्रा और ज़ियारत की special package deal के लिए call करें 905-275-3555 905-275-3555
1: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 647-271-4147
0: जी हाँ 647-271-4147 647-271-4147 शिराज हुसैन साहब के रबते का नंबर है। वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी प्रोफेशनल मॉर्गेज एडवाइजर हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दो लोकेशन से आपको ईस्ट एंड वेस्ट दोनों जगह से आपको सर्व करते हैं। आपका केस देख के आप बता देंगे कि क्या मुमकिन है क्या नहीं है। फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए बहुत ही स्पेशल किस्म के प्लान इनके पास मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है खुश आमदीद कहेंगे। शिराज भाई अस्सलाम वालेकुम।
11: कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? ठीक ठाक हैं,
11: शुक्र अल्लाह का।
0: अच्छा, आजकल थोड़ा सा अभी एक्टिविटी हो गई है, थोड़ा ज्यादा शुरू हो गई हम देख रहे हैं और प्रीकॉन में भी है और बाकी भी है, तो अभी क्या सूरत हाल है? इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़े हैं लेकिन कुछ लोग कहते शायद बढ़ ना जाए, तो मॉर्गेजेस के हवाले से कुछ अपडेट दीजिए हमारे सुनने वालों को।
11: बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट तो अभी कुछ लोग ही वाली बात, कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये है कि मार्केट में हलचल बहुत ज्यादा, फर्स्ट टाइम बायर्स जो है ना बहुत ज्यादा इसका फायदा उठा रहे हैं। 30-year amortization मिल रही है, उनको रिबेट वापस मिल रहे हैं, बिल्डर से मिल रहे हैं, रीसेल पे मिल रहे हैं, 5% 5+10% पे वो क्वालिफाई कर रहे हैं हम उनको, तो फर्स्ट टाइम बायर के लिए बहुत अच्छी है। हमारे पास रेट्स, इंटरेस्ट रेट बड़े अच्छे हमें मिल रहे हैं बैंक से, 3.4 3.5 तक भी हम ला के दे रहे हैं।
0: अच्छा।
11: तो उसके लिए हाँ, वो हमारे पास रेट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल। तो अभी अगर आप बैंक में जाते हैं तो वो 3.9 वेरिएबल, 3.8 हम उससे नीचे करा के दे रहे हैं क्लाइंट्स को।
0: वेरी राइट, मतलब समीन अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, 5-10% पे भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे और रेट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 6472714147 6472714147। अच्छा शिराज साहब, मल्टीपल प्रॉपर्टीज के हवाले से बहुत से लोग हैं, पिछले दिनों में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया था और अभी क्योंकि बायर्स मार्केट है तो बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन भी लोगों के पास आ जाती हैं, तो उनके लिए आप हेल्प कर सकते हैं जो 2-3-4 प्रॉपर्टीज हों और लेना चाहते हों।
11: बिल्कुल, मल्टीपल की तो हम हेल्प कर ही रहे हैं, उसके साथ अगर किसी का क्रेडिट खराब है, लेट्स से किसी का क्रेडिट 600 से भी नीचे है, तो अगर उनको भी मॉर्गेज करानी है तो वो भी हमें कॉल करें, हमारे पास लैंडर्स हैं। अक्सर क्या हो रहा है कि डेट्स बढ़ चुके हैं, कोई लेट पेमेंट हो चुकी है, कोई कलेक्शन आ चुकी है, या मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ चुकी है तो स्कोर नीचे आ चुका हुआ है, तो अगर आपकी एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी, पांच प्रॉपर्टी तक भी है आपकी, तो आपका स्कोर कम है, तो आप हमें जरूर कॉल करें। उसके लिए भी मैं बहुत ऐसे हमारे पास लैंडर्स है, रेट भी उनके अच्छे हैं, यानी कि बहुत प्राइवेट लैंडर की तरह नहीं है कि 8-9% पे नहीं है, बहुत बहुत कम रख के हम उनको ना अप्रूवल करा के दे रहे हैं, तो वो भी जरूर हमें कॉल करें।
0: 6472714147 पे आप रब्ता कर लीजिए। अच्छा, एक लोग बहुत कहते हैं कि जो कमर्शियल मॉर्गेज है वो शायद 35% या 40-50% पे आपकी होती है, उसके लिए आप हेल्प कर सकते हैं कमर्शियल मॉर्गेज के लिए?
11: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि 35% या 40% पे होता है। मैंने अभी डील कर रहा हूँ, वो पैकेज है, उसके साथ हमने लोन भी कराया, मॉर्गेज भी करा रहे हैं, तो मैंने 80% पे कराई है वो।
0: अच्छा,
11: तो ए लेंडर से कराया है, हाँ कमर्शियल भी 80% पे हम करा रहे हैं। बेसिकली वो पैकेज बनता है पूरा बैंक के साथ, हमें क्या उनके साथ प्रोडक्ट चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए, तो वो चीजें जो है ना वो बहुत हेल्प करती है। 20% पे भी हम करा रहे हैं, 25% पे भी करा रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप लेके आ रहे हैं, किस जगह पे ले रहे हैं,
0: बिल्कुल
11: ये बड़ा मैटर करता है।
0: बिल्कुल ठीक है, 6472714147 6472714147 अच्छा थोड़ा सा आखिर में लाइन ऑफ क्रेडिट लोन्स, बिजनेस लोन्स हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि ये भी आजकल लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसमें किस तरह से आप उनके हेल्प करेंगे?
11: बेसिकली जो बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट, ये तो ऑलमोस्ट हर बंदे की जरूरत है, बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट हम कर रहे हैं, स्टार्टअप बिजनेस लोन हम करा के दे रहे हैं, पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट करा के दे रहे हैं, और उसके साथ अगर आपका सबसे अच्छा ये है कि अगर आपका बिजनेस रन है और आप उसमें आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसके ऊपर ऑपरेटिंग लाइन ऑफ क्रेडिट हो सकती है अप टू 500,000 की।
0: अच्छा।
11: अगर आपने स्टार्टअप बिजनेस लोन करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो स्टार्टअप बिजनेस लोन हम अप टू $500,000 का करा के दे रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो बैंक आपको ऑफर करता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि इनको लेना कैसे है, इनको यूज कैसे करना है। तो बहुत ऐसे बैंक हैं, हुआ क्या है कि कुछ लोगों ने इसको गलत यूज किया है, तो जो लोग गलत यूज करते हैं तो सबके दिन में ये जा चुका हुआ है कि ये गलत है, बैंक नहीं देगा। अगर आप उसको लिजिट कर रहे हैं, आप उसको अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास लोकेशन है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो व्हाई नॉट, आप जरूर हमें कॉल करें, हम आपको करा के देंगे।
0: नंबर टू कॉल इज 6472714147 6472714147। कुछ और ऐड करना चाहें आप शिराज साहब?
11: हमेशा जैसे आप कहते हैं, ईस्ट हो या वेस्ट हो, आप जरूर हमें कॉल करें। अगर आपका क्रेडिट खराब हो चुका हुआ है तो आप तब भी मुझे कॉल करें। अगर आप किसी भी रीफाइनेंसिंग में आप रिन्यूअल करना चाह रहे हैं, इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट निकालना चाह रहे हैं, अगर आपको आपके डेट्स ज्यादा आ चुके हुए हैं तो आप उसको पे ऑफ करके एक मॉर्गेज करना चाह रहे हैं, सेकेंड मॉर्गेज आपके पास है, तो उसके लिए भी जरूर हमें कॉल करें।
0: नंबर टू कॉल 6472714147 6472714147। थैंक यू वेरी मच शिराज भाई, बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीक आपसे बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ऑफिस नंबर नोट कीजिए 6472714147 6472714147। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। आप शिराज सेन साहब का नंबर नोट कर लें, मॉर्गेजेस के हवाले से, लाइन ऑफ क्रेडिट लोन के हवाले से, कमर्शियल मॉर्गेज के हवाले से 6472714147 6472714147। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। खबरें 8 बजे आपके लिए पेश की जाती हैं, उसके बाद हम बात करेंगे जो गवर्नर राज और एमरजेंसी लगी है और बाहर क्या नज़र आ रहा है और आगे क्या होता नज़र आ रहा है और किस तरह से हुकूमत है भी उनकी और नहीं भी है। یعنی حکومت کے کام معطل ہو گئے ہیں. وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ابھی بھی سہیل آفریدی صاحب ہی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں, وہ آج گورنر صاحب کہہ رہے تھے وہ آف لائن ہیں, یعنی مطلب وہ کام نہیں آف لائن ہے, وہ آن لائن آ ہی نہیں رہے. اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. نیوز آپ کے لیے جناب بلازمان صاحب پیش کرتے ہیں. 24 گھنٹے ہمارے نشاط ریڈی پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ہے ٹورنٹو 360 TV, جو تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم باکس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریڈی پاکستان ٹورنٹو کے نشاط آپ ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 TV پہ بھی 7 سے 9 بجے براہ راست دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے لیے چلیں گے آپ کے نیوز کی طرف, جو پیش کر رہے ہیں جناب بلازمان صاحب.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: न्यूज़ के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने। खुदा न खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए या आपको टिकट मिल जाए, कॉल कर लीजिए 416-570-0157। इट्स 416-570-0157। न्यूज़ के लिए हम तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी डेयरी के इंटरसेक्शन 3 खूबसूरत हाल 1200 तक अफराद की गुंजाइश एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 437-425-2500। इट्स 437-425-2500 आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान और टोरंटो। खबरों की तफसील लेकर बिलाल जमान आपकी खिदमत में हाजिर है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी और गवर्नर राज के नफाज के बाद पेशावर के तमाम तालीमी इदारे और रेड लाइन BRT सर्विस को भी कल खोल दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सूबे में गवर्नर राज और इमरजेंसी के नफाज के बाद पेशावर में एक दिन के लिए तालीमी इदारे और BRT सर्विस बंद कर दी गई थी। ज़राए के मुताबिक हालात मामूल पर आने के बाद खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि तालीमी इदारे भी कल खोल दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और एमरजेंसी के नफाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी का इजलास तलब कर दिया गया। इजलास कल 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास की सदारत ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचगजई करेंगे, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में ओपोजिशन इत्तेहाद की पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की हिकमत अमली को भी तय किया जाएगा। पेशावर में अपेक्स कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अमन खराब करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले अब इस्लामाबाद से होंगे, जलालाबाद से नहीं। उन्होंने कहा कि हम अपनी पुलिस के साथ खड़े हैं, जो वसाइल मौजूद हैं वो उनको देंगे। IG चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाएं, फोर्सेज के लिए शहदा का पैकेज भी बढ़ा रहे हैं। गवर्नर KP ने कहा कि हमें 13 साल का गंद साफ करना है, कोशिश होगी कि इसे 3 माह में साफ कर दें। हमने वफाक से सूबे का मुकदमा लड़ा, लेकिन पिछली हुकूमत सूबे का मुकदमा नहीं लड़ सकी। हमें वसाइल का इल्म है, दलील और दलाइल से मुकदमा लड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अमूर की निगरानी के लिए 11 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी कायम कर दी। कमेटी सूबे में गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और रोज़मर्रा के अमूर की मॉनिटरिंग करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मॉनिटरिंग कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी में राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, अमीर मुकाम, तारिक फजल चौधरी, खालिद मकबूल सद्दीकी भी